सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: आप सभी को एक सुपर डुपर गुड मॉर्निंग। स्टेशन क्लॉक में 6:07 हो रहे हैं। यहाँ पे 4 घंटे बैठेंगे, एक साथ करेंगे दिल खोल के बात, गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे, साथ ही साथ ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियां शेयर करेंगे एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो कुर्सी की बेटी बांध लीजिए क्योंकि यहाँ पे हमें उड़ान भरने वाले हैं। और मैं फिर से याद दिलाऊंगा आपको कि बाऊ मुझे मॉर्निंग सिर्फ गुड नाइट बिंदास होनी चाहिए। और मॉर्निंग को बिंदास बनाने के लिए बातें तो हम करेंगे ही करेंगे, मगर गाने भी लेकर आए हैं आपके लिए कुछ प्यारे प्यारे। अब आगे वाले ने ऐसा बोल दिया तो यहाँ वाला भी यही बोलेगा ना,
1: फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल।
0: अब जब बात इतनी आगे बढ़ी गई

कि बाबू तुम्हें प्यार हो गया है, और प्यार जब हो जाता है तो हर छोटी चीज में मजा आ जाने लग जाता है। और ये एक चीज मैं बताऊंगा तो ये भी क्लैरिफाई करूंगा कि प्यार सिर्फ किसी इंसान से नहीं, रोमांटिक लव नहीं, जब लव एज एन इमोशन तुम्हें लगता है ना कि यार मुझे हर चीज से प्यार है, मुझे आसपास जो भी चीज है ना उससे प्यार है, जब वैसी फीलिंग आ जाती है तो फिर भाई जिंदगी में बहुत ज्यादा मजा आ जाने लग जाता है। और यही बात बताते हुए हम भी जरा अपना शो किक स्टार्ट करते हैं। आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ, आज के इंटेंशन क्या है, क्योंकि इरादे बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you're listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive Jio Bindas.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
4: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
5: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव. स्टेशन क्लॉक में अभी 6:19 हो रहे हैं और यहाँ पे मेरे पास थोड़े मैसेजेस आए हैं, एक एक करके जरा देख लेते हैं. नाजरी जी का मैसेज आया है और लिखा है कि गुड मॉर्निंग, फोकस ऑन हाउ मच दे मीन टू यू, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड फॉर देयर प्रेजेंस और ऑफर अ सिंपल विश फॉर देयर पीस एंड हैप्पीनेस करके. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. आपको भी एक सुपर डुपर और बिंदास सा मॉर्निंग जो है मैं विश करता हूँ. उसके साथ साथ शशिकांत जी का भी मैसेज जो है मेरे पास आया है और एक फोटो भेजा है उन्होंने जिसमें लिखा है ब्यूटिफुल पिक्चर्स आर डेवलप्ड बाय नेगेटिव्स इन अ डार्क रूम, सो इफ यू सी डार्कनेस इन योर लाइफ अज्यूम दैट गॉड इज मेकिंग अ ब्यूटिफुल पिक्चर फॉर यू, बी पॉजिटिव एंड हैव फेथ करके. वाह भाई वाह, बहुत ही प्यारी बात कही आपने यहाँ पे और फोटोग्राफी से आपने जो है एसोसिएट करके एक बहुत ही बढ़िया लाइफ लेसन जो है दिया है. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन जो है हम विश करते हैं. जुल्फी भाई का मैसेज आया है, लिखा है गुड मॉर्निंग, वैल्यूएबल्स वी कैरी मे इम्प्रेस अदर्स बट वैल्यूज वी होल्ड विल इंस्पायर अदर्स. वाओ, बहुत बढ़िया बात और बहुत प्रोफाउंड बात कही गई है यहाँ पे. थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच. आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं. ऋषिन का मैसेज आया है, ऋषिन ने लिखा है गुड मॉर्निंग, द सन इज आवर एग्जाम्पल, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स वी गो डाउन वी हैव टू कीप राइजिंग करके. वाह वाह वाह भाई, आज तो काफी जुजारू मोटिवेशन वाला एक वो लग रहा है मुझे. आपको भी काफी बढ़िया दिन में विश करता हूँ ऋषिन, थैंक यू सो मच. अस्मा का मैसेज आया मेरे पास और अस्मा ने लिखा है नो मैटर वॉट हैपन्स इन लाइफ बी गुड टू पीपल, बींग गुड टू पीपल इज अ पीसफुल वे टू लिव एंड अ ब्यूटिफुल लेगेसी टू लीव बिहाइंड, गुड मॉर्निंग करके. बिल्कुल सही बात कही आपने और इससे मैं शत प्रतिशत जो है सहमत हूँ और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन में विश करता हूँ अस्मा. अबरार भाई का मैसेज आया है और अबरार भाई ने भी एक बहुत ही प्यारा सा हैप्पी मंडे गुड मॉर्निंग करके मैसेज भेजा है. हैप्पी मंडे अबरार भाई, और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं. गुड मॉर्निंग कतर, हरपाल चंदू फ्रॉम दुकान करके मैसेज आया है. हरपाल जी गुड मॉर्निंग, और आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास दिन हम विश करते हैं. थैंक यू सो मच मैसेज करने के लिए. और अगर आपने अभी अभी ट्यून इन किया है तो जाने इंतजार किस बात का है. 3311063 यही है हमारा नंबर. तत्काल प्रभाव से, तुरंत से, पहले अभी के अभी कर दीजिए हमें मैसेज. बताइए क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब कुछ और आज के इरादे क्या हैं. और थोड़ी देर में गानों के उस पार जब हम वापस आएंगे तो एक सवाल लेकर आएंगे ये जानने के लिए, ये परखने के लिए, ये टेस्ट करने के लिए कि आप 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं इन सब से कितने तेज हैं. फिलहाल यहाँ पे सुनते हैं कूल सॉन्ग ऑफ द आवर और कहते हैं जियो बिंदास.
1: कूल सॉन्ग रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
3: कूल सॉन्ग.
4: हनी व्हेन आर यू कमिंग?
5: आई एम कमिंग बेबी, आई एम ऑन माय वे होम.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। मुझे यहाँ पे मेहरुनिसा जी का मैसेज आया, लिखा है ऑसम मॉर्निंग सुदेव, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। आपको भी काफी बढ़िया और बिंदास और ऑसम मॉर्निंग जो है हम विश करते हैं। और यहाँ पे जो है वक्त हो चुका है ब्लैक बोर्ड स्टोरीज का, तो चलिए शुरू करते हैं।
1: रेडियो ऑलिव प्रेजेंट्स ब्लैक बोर्ड स्टोरीज।
0: आज ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में काफी सिंपल सा सवाल लेकर आए हैं हम, तो ध्यान से सुनेगा मेरे सवाल को। एशिया का सबसे छोटा कंट्री कौन सा है, स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया कौन सा है, ये आपको मुझे बताना है। एशियन कॉन्टिनेंट का सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सा है, ये आपको बताना है। तत्काल प्रभाव से तुरंत से पहले अभी के अभी इसके जवाब जो है भेज दीजिए हमें 3311063 पर। और आप ऑडियो नोट भेज सकते हैं, मुझे टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं, मगर जल्दी जल्दी मैसेज भेजिए। देखते हैं कि आप लोग पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं, बारहवीं, इन सबसे कितने तेज हैं। तो तैयार हो जाइए, यहाँ पे जाने तू या जाने ना मूवी का गाना प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 6:48 हो रहे हैं और यहाँ पे जो है मैंने सवाल पूछा था ब्लैक बोर्ड स्टोरीज में और मेरे पास एक जवाब आया है और रमेश जी ने मुझे जवाब भेजा है, तो चलिए जरा सुनते हैं।
1: गुड मॉर्निंग मिस्टर सुदेव, दिस इज मालदीव्स
0: बोला है उन्होंने। उसके साथ साथ कुछ टेक्स्ट मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं। मोहम्मद आजम भाई ने मुझे भेजा है, उन्होंने मालदीव्स लिखा है। अनिल जी ने मैसेज किया है, उन्होंने मालदीव्स लिखा है। आसमा ने मुझे मैसेज किया है, आसमा ने भी मालदीव्स लिखा है और सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो आपके लिए बजेंगी यहाँ पे तालियां। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अब इसमें बता दूं मैं कि जो सवाल था कि स्मॉलेस्ट कंट्री इन एशिया जो मैंने पूछा था, उसमें बाई लैंड एरिया भी मालदीव्स है एंड बाई पॉपुलेशन भी मालदीव्स ही है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी कभी कभी लोगों को हो जाता है, क्योंकि सवाल जो है ये नहीं पूछ रहा कि बाई लैंड एरिया विच इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री। एक वेग सवाल था, मगर आपने बिल्कुल सही तरीके से जवाब दिया और बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा मुझे इस मामले में इस तरीके से आपने इस सवाल को अप्रोच किया है। और उसके साथ साथ मैं यही बताना चाहूँगा कि आप लोगों ने प्रूव कर दिया कि आप 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं से बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। तो चलिए इसी खुशी में काम करते हैं, आने वाले गाने कौन से हैं उनकी एक झलक भी जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि अब आने क्या वाला है। और उसके साथ साथ अगले आवर में जब हम आएंगे तो थोड़ी इम्पोर्टेंट बातें भी जो हैं आपके साथ करेंगे। किस बात से परेशान है हम सब, एक ही चीज़ है, वो है गर्मी। तो अगले आवर में हम तापमान के बारे में जरा बात करना चाहेंगे। अभी फिलहाल है जवानी तो इश्क होना है मूवी का हम गाना सुनेंगे फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर में। और इससे मुझे एक और चीज़ याद आई कि बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है आजकल, बहुत सारे लोगों ने देखा, काफ़ी फनी भी लगा लोगों को। मुझे पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, तन्मय रिएक्ट्स में जो है वरुण धवन आया है, उनका जो एपिसोड था काफ़ी ज़्यादा वायरल गया है, काफ़ी लोगों को पसंद आया। मैंने पूरा नहीं देखा, थोड़ा ही देखा मैंने, बट जितना मैंने देखा मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने वरुण धवन की जो है टांग खींची है, इट इज़ क्वाइट अम्यूजिंग, मुझे अच्छा लगा। अभी फिलहाल यही बात बताते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं, ऑल ए फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर।

0: 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

0: टेनमैन की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास मॉर्निंग।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर। विन अप टू 5 मिलियन रियाल्स विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थकेयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4411 1133।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और अभी स्टेशन क्लॉक में 7:07 हो रहे हैं और यहां पे 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा बह रही है, विच मीन्स ताला फॉर ए रीजन। और इस 7 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से बहने वाली हवा से सवाल मेरा एक ही है कि ठंडक दे दो, थोड़ी बस थोड़ी ठंडक दे दो। और कल अष्टमी से बात कर रहा था मैं दोपहर को, तो अष्टमी मुझे बता रही थी यार मैं बाहर जाकर आई हूँ, बहुत गर्मी है। और गर्मी ऐसी है कि हम वीक फील करते हैं, मतलब बाहर निकलने के बाद हमें बहुत थकान महसूस होती है, ऐसा लगता है कि हमारी एनर्जी जो है वो उस गर्मी ने ऐसे निकाल ली है हमसे। और अभी का टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस का है और आज का हाईएस्ट टेम्परेचर जो है वो जाएगा 43 डिग्री सेल्सियस का और लोएस्ट जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस का। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि भाई हाइड्रेटेड रहिए, पानी अच्छे से पिए, इन्फ्यूज्ड वाटर आप पी सकते हैं और जितना हो सके उतना हाइड्रेशन आप लेके रखिए। ओवर भी नहीं करना है, अंडर भी नहीं करना है, प्रॉपर अमाउंट के हिसाब से आपको करना है। और लाइट कलर क्लोथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गाड़ी पार्क कर रहे तो कोशिश कीजिए शेड में करें। मैं समझ सकता हूँ कभी कभी मुश्किल हो जाता है, मगर कोशिश यही रखिएगा। और फिलहाल यही बात बताते हुए हम इधर आगे बढ़ते हैं, महमूद और राघव उसके साथ साथ रुआ की आवाज में सुनते हैं कॉकटेल 2 का गाना। स्टे ट्यून्ड, ये रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3।
5: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
3: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
2: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिस्निंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 7:20 होने वाले हैं और यहाँ पे मुझे कुछ फोटोज आए हैं। मुझे अहमद भाई ने एक फोटो भेजा है, उसके साथ साथ अनिल जी ने एक फोटो भेजा है, दीपक जी ने एक फोटो भेजा है। सूरज काफी बढ़िया चमक रहा है यार, सही है। मतलब मैं समझ सकता हूँ कि गर्मी की क्या हालत हो सकती है। और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है, ये मैसेज मुझे भेजा है अली भाई ने भी एक फोटो भेजा है। और आई थिंक ये फोटो जो है सी रिंग रोड के आसपास का फोटो है, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, मुझे लग रहा है, और क्योंकि कुछ कुछ एरियाज काफ़ी जाने पहचाने से लग रहे हैं। और उसके साथ साथ मुझे एक और मैसेज आया है, ये रश्मिका जी का मैसेज आया है। उन्होंने बोला, गुड मॉर्निंग सुदेव जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताइए क्या हाल है। और थैंक यू सो मच ये फोटोज़ भेजने के लिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आप लोगों ने जो है वक्त निकाल के फोटोज़ खींचे। और अच्छा ज़्यादा इसलिए लगा क्योंकि आज मैं प्रॉम्प्ट करना भूल गया था, बताना भूल गया था, बोलना भूल गया था कि फ़ोटो भेज दो, मगर फिर भी आपने याद से भेजा, दिल खुश कर दिया मेरा यार। इससे ज़्यादा क्या ही मांग सकता हूँ मैं। फिलहाल इसी खुशी में ज़बरदस्त हिट प्ले करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindaas. Doha Bank और Lulu लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu शॉपिंग वाउचर।
0: Lulu स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स Lulu पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए Lulu पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। Doha Bank Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Your daily surprise is here. Apna hala recharge karo aur pao free data ya minutes ka surprise. Claim karo Ooredoo app par. Experience more with Ooredoo.
3: Is khel mein player nahi warrior kehlate hain. Yahan har goal pe adrenaline rush high hota hai.
4: Over the top for Donnarumma.
3: यहाँ हर चोट एक मेडल है, हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। Because it's not just a game, it's an emotion.
5: It's not just a game, it's an emotion.
6: It's an emotion.
5: It's an emotion.
3: FIFA ki har detail ke liye suniye Radio Olive.
7: In association with...
0: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
8: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
0: Your trusted remittance partner.
9: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
10: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
9: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
10: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
9: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
11: Malabar Gold and Diamonds Bindaas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
12: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
13: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 7:35 हो रहे हैं और यहां पे वक्त हो चुका है फिट है तो हिट है का।
1: फिट है तो हिट है।
0: फिट है तो हिट है में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। कई दफा हमने सुना होगा या फिर ये एक्सपीरियंस किया होगा, उठते वक्त, चलते वक्त या फिर बैठते वक्त जॉइंट पॉपिंग की आवाज़ या फिर जॉइंट क्रैकिंग की आवाज़ आती है। इससे लोगों को लगता है कि हाँ भाई अब तो बुढ़ापा आ चुका है, जॉइंट डैमेज शुरू हो चुका है, क्या करेंगे करके। मगर फैक्ट क्या कहता है ये जानते हैं। फैक्ट ये कहता है कि रिसर्च के अकॉर्डिंग जॉइंट से आने वाले पॉपिंग, क्रैकिंग या क्लिकिंग साउंड्स का मतलब हमेशा डैमेज नहीं होता। कई बार ये आवाज़ टेंडन्स के मूवमेंट, लिगामेंट्स के पोजीशन चेंज होने या जॉइंट के अंदर प्रेशर चेंजेस की वजह से आते हैं। और जॉइंट्स के अंदर एक ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। मूवमेंट के दौरान इस फ्लूइड में डिजॉल्व्ड गैसेस टेम्परेरीली बबल्स बना या रिलीज कर सकते हैं जिससे पॉपिंग साउंड जो है सुनाई दे सकती है। अगर जॉइंट साउंड पेन फ्री हो, स्वेलिंग ना हो, मूवमेंट नॉर्मल हो तो ये यूजुअली हार्मलेस माना जाता है और कंसर्न की कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर पॉपिंग के साथ आपको पेन है, स्वेलिंग है, स्टिफनेस है, लॉकिंग सेंसेशन है तो इसकी अंडरलाइंग इशू कुछ हो सकती है, कुछ इंजरी का साइन हो सकता है जो इवैल्यूएट करवाना चाहिए। मोटी मोटी बात यही है कि हर जॉइंट क्रैक या पॉप डैमेज का सिग्नल नहीं होता। अगर आवाज़ के साथ पेन नहीं है तो ठीक है, और अगर पेन आता है, स्टिफनेस महसूस होता है तो गेट इट चेक्ड। और यही बात बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इत्तेफाक की बात यह है कि अगला गाना है मूव योर बॉडी नाउ। शान, आकृति कक्कर और हर्षकौर की आवाज में किस्मत कनेक्शन का गाना। स्टे ट्यून्ड, यह है रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। जियो बिंदा।

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 7:50 हो रहे हैं और यहां पे जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर जो है हम देना चाहेंगे आपको लोकल अपडेट्स में। यहां पे एक बहुत ही बढ़िया एक चीज हुई थी। कतर की मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ ने आई हेल्थ से जुड़ी नेशनल इंस्टीट्यूशंस और स्टेक होल्डर्स के साथ एक नेशनल मीटिंग जो है ऑर्गेनाइज की थी। उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स जो थे उस मीटिंग के हुए थे कतर में आई हेल्थ के करंट सिचुएशन को रिव्यू करना, आई डिसीज प्रिवेंशन और ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन एफर्ट्स को और स्ट्रेंथन करना, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के बीच कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन को कैसे बढ़ा सकते हैं इनमें डिस्कस करना, और आई केयर सर्विसेज की क्वालिटी और एक्सेसिबिलिटी को इम्प्रूव करना। और की डिस्कशंस जो हुए थे वो थे नेशनल एक्शन प्लान फॉर आई हेल्थ एंड ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन, इस पर एक रिव्यू हुई थी, और आई डिसीज की अर्ली डिटेक्शन और प्रिवेंशन को कैसे और इफेक्टिव बना सकते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। स्टेक होल्डर्स के बीच बेटर इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन कैसे किया जा सकता है और सर्विस क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए एआई और न्यू टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है। इसमें फोकस एरियाज जो थे वो थे नेशनल अचीवमेंट्स और ऑनगोइंग इनिशिएटिव्स का असेसमेंट, उसके साथ साथ एग्जिस्टिंग चैलेंजेस और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज पर डिस्कशन, और लास्ट में बेटर हेल्थ आउटकम्स के लिए क्या प्रायोरिटीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए, इन सब के बारे में बात की गई थी। और यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। सचेत टंडन की आवाज में सुनते हैं मलंग का एक बहुत ही बढ़िया गाना। एंजॉय करते हैं इस गाने को एक साथ बैठकर और कहते हैं जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग, मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million riyals विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। फीफा की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
4: एनकाई के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ। अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
5: हाय एवरीवन, मैं हूं अरमान मलिक।
6: अरमान मलिक
7: नंबर
5: 106.3 FM रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास।
0: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।
7: रेडियो ऑलिव नंबर वन।
8: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
9: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
10: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: आतिफ असलम और लेजेंडरी तुलसी कुमार की आवाज में सुना हमने पानी ओसा। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:19 हो रहे हैं और यहाँ पे भाई वक्त आ गया है कुछ गेम अपडेट्स के बारे में बात करने का। वो सिर्फ एक मामूली गेम नहीं है, ये गेम है ब्लॉकबस्टर।
1: ये खेल है ब्लॉकबस्टर।
2: In association with
3: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
4: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
3: your trusted remittance partner.
0: भाई बहुत ही बड़ा कारनामा हुआ है फीफा वर्ल्ड कप के मैचेस में। क्या बताऊं मैं, जर्मनी वर्सेस क्रोएशिया जो गेम था। अब देखिए इसमें जर्मनी जो है 4 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, काफी हैवी वेट टीम है। क्रोएशिया अपने पहला वर्ल्ड कप में जो है कदम रख रही थी और जर्मनी ने जो धोया उन्हें यार, 7-1 से उन्होंने हराया। मुझे तो इस बात का एक आश्चर्य है कि उन्होंने एक गोल स्कोर भी किया जर्मनी के खिलाफ, विच इज क्वाइट शॉकिंग, क्योंकि जिस तरीके से जर्मनी ने डोमिनेट किया। सच बताऊं तो मुझे 2014 वर्ल्ड कप का जर्मनी वर्सेस ब्राजील याद आ गया। एज ए ब्राजील फैन मुझे अभी भी दुख होता है उस बारे में सोच के, मगर हाँ काफी डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस जर्मनी के साइड से। अगर हम बात करें नेदरलैंड्स और जापान की तो मैच टाई हो गया, 2-2 स्कोर था। ग्रुप डी में ऑस्ट्रेलिया वर्सेस टर्की के मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जो है एक काफी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, जिससे 2-0 से उन्होंने मैच को जीत लिया। और हाइटी और स्कॉटलैंड के बीच में स्कॉटलैंड ने 1-0 से जो है मैच जीत लिया। आज के कुछ मैचेस और हैं जिनके अपडेट के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, हम आएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल यहाँ पे कूल सॉन्ग ऑफ द आवर सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
2: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

0: कुणाल गांजावाला और वसुंधरा राज की आवाज में सुना हमने बहुत ही बढ़िया गाना सलाम नमस्ते। स्टेशन क्लॉक में 8:30 हो रहे हैं यार। जब भी हम ये 8:30 को 8:30 बोलते हैं ना तो काफी प्रिटेंशियस सा लगता है मुझे। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी कोई बहुत बड़ा एंकर बन गया, बट ऐसा नहीं है। बढ़िया, 8:30 बज चुके हैं और यहाँ पे हम बात कर रहे थे गेम्स के बारे में, मैचेस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं।
1: ये खेल है, ब्लॉकबस्टर। In association with...
2: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
3: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
2: Your trusted remittance partner.
0: और यहाँ पे हम बात करेंगे आज के मैचेस के बारे में। तो आज जो है ग्रुप ई का एक मैच हो चुका है, आइवरी कोस्ट वर्सेस इक्वाडोर, जिसमें आइवरी कोस्ट ने 1-0 से मैच जीत लिया है। ग्रुप एफ में स्वीडन और ट्यूनिशिया के बीच में मैच हुआ, जिसको 5-1 से काफी अच्छे परफॉर्मेंस के साथ स्वीडन ने अपने हाथ में कर लिया है। और आज आने वाले जो मैचेस हैं, दो मैचेस हैं जो है स्पेन और काबो वर्दे के बीच में, और उसके साथ साथ ग्रुप जी में बेल्जियम और इजिप्ट के बीच में। देखते हैं ये दोनों टीम कैसे परफॉर्म करते हैं, ये दोनों मैचेस किस तरीके से आगे आते हैं और कौन इन टीम में, इन मैचअप्स में से विनर बनने वाला है। फिलहाल यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं। आजा ओ मेरी तमन्ना मूवी का गाना प्ले करते हैं, अजब प्रेम की गजब कहानी का। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरेडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरेडू.
2: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
3: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
2: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
3: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
2: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स. कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन.
4: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर. मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मालाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा.
5: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 8:47 जो है हो रहे हैं और यहां पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। देखिए, हम जानते हैं फीफा वर्ल्ड कप जो है काफ़ी बढ़िया तरीके से जोरों शोरों से जो है चल रहा है और कतर का एक मैच हो चुका है स्विट्जरलैंड के साथ, जिसमें कतर ने 1-1 से मैच को जो है ड्रॉ कर दिया और काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखाई। अपना पहला पॉइंट जो है उन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में जीता। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा वो ये है कि ये जो वर्ल्ड कप है इसमें काफ़ी सारे सरप्राइजेस भी हमें मिल रहे हैं, कुछ कुछ जो है अंडरस्टूड भी हैं कि यार, जैसे एग्जांपल है क्रोएशिया और जर्मनी का गेम जो था, मैं पता था कि जर्मनी के साइड में ही गेम जाएगा, मगर इतना जाएगा इस बारे में थोड़ा आइडिया नहीं था। मगर हाँ, उसके साथ साथ एक और चीज़ जो सबसे प्यारी लगी मुझे वो ये है कि कुछ टीम्स सही में हैवी वेट्स के सामने बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था ब्राज़ील वर्सेस मोरक्को जो मैच था। सबने बोला था कि भाई ब्राज़ील के साथ खेल रहे, तो मोरक्को के कैप्टन ने ही बोला था कि हम अफ्रीका के ब्राज़ील जाने जाते हैं करके। सबने मजाक उड़ाया था, मगर उसके बावजूद उन्होंने क्या बढ़िया परफॉर्मेंस दिया। उसके साथ साथ एक और चीज़ जो मुझे अच्छी लगी है, या फिर मैचेस के बारे में या फिर फुटबॉल एज ए गेम के बारे में जो मुझे अच्छी लगी है, स्पेशली फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, सिर्फ इस एडिशन के लिए नहीं, इन जनरल फीफा वर्ल्ड कप के बारे में जो एक चीज़ जो मुझे अच्छी लगती है कि मोर देन अ स्पोर्टिंग इवेंट, ये जो है सेलिब्रेशन जैसा बन जाता है। इट्स मोर ऑफ ए सेलिब्रेशन। और जिस तरीके से लोग आते हैं, दुनिया के डिफरेंट डिफरेंट कोने से आते हैं और अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं, अपने टीम को सेलिब्रेट करते हैं, फुटबॉल को सेलिब्रेट करते हैं, सिमिलरली कतर भी जो है ऐसे ही सेलिब्रेट कर रहा है अपने कल्चर को, अपने टीम को, अपने ट्रेडिशंस को। और हम सब ने देखा था कतर के मैच में कैसे बहुत सारे फैंस जो हैं यहाँ से गए हैं थोप पहनकर वो मैच देखने आए थे। और सच बताऊँ तो एक मिनट के लिए मुझे लगा कि भाई ये स्टेडियम US में नहीं है, कतर में ही है। और जिस तरीके से लोगों ने भी जो एक्सेप्टेंस दिखाया, लोगों को भी कितना पसंद आया है, उससे हमें यही पता चलता है कि कतर जो है दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है। और वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में या फिर R&D में ही नहीं, स्पोर्ट्स में भी अपनी छाप छोड़ रहा है। वो बता रहा है लोगों की कैसे हम अपने कल्चर के साथ, अपने ट्रेडिशंस के साथ जो है आगे बढ़ते हैं। और यही बात जो है कतर को बाकी डिफरेंट कंट्रियों से अलग बनाती है। और यही बताते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

0: एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग विद आरजे सुदेव, हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास।
1: मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स बिंदास मॉर्निंग। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर। मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ, जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा।
2: कमर्शियल बैंक, योर फ्यूचर ग्रोस व्हेन योर सेविंग्स ग्रोस। सेव मोर, ड्रीम बिगर, विन अप टू 5 million rials विद कमर्शियल बैंक
3: इन एसोसिएशन विद नसीम हेल्थ केयर, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4441 1133।

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। ये है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:07 हो रहे हैं और यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया खबर जो है हम आपको बताना चाहेंगे एप्पल के आईफोन 18 स्ट्रैटेजी के बारे में। ठीक है, तो एप्पल का प्रीमियम स्मार्टफोन मार्केट में जो है काफ़ी अपग्रेड्स जो है बहुत टाइम लेते हैं आने में, क्योंकि जो फीचर्स हम बाकी चीप एंड्रॉयड फोन्स में या फिर अफोर्डेबल एंड्रॉयड फोन्स में देखते हैं वो एप्पल में थोड़ा लेट आते हैं। बट अभी जो है थोड़ा उनके स्ट्रैटेजी में चेंजेस आ रहे हैं। अभी जो न्यू आईफोन अल्ट्रा आ रहा है, एप्पल ने एक नया आईफोन अल्ट्रा लॉन्च करने की बात की है जिसका एस्टिमेटेड प्राइस है $1,999। ये फोल्डेबल और लग्जरी फोकस्ड फ्लैगशिप मॉडल होगा और टारगेट ऑडियंस जो है एप्पल के सबसे एफ्लुएंट यानी कि हाई स्पेंडिंग कस्टमर्स के लिए, यानी हम जैसे नॉर्मल लोग तो उस रेंज में आएंगे नहीं। और इसमें प्रीमियम मटेरियल्स और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज होंगी, बिल्कुल बढ़िया, ऐसा ही करना चाहिए। जो नॉर्मल लोग हैं उनको और नॉर्मल करके रखना चाहिए ताकि वो चीज़ें एक्सपीरियंस ना करें। उसके साथ साथ आईफोन 18 के प्राइजेस के बारे में अगर हम बात करें तो आईफोन 18 प्रो का प्राइस जो है एक्सपेक्टेड है $1,099 का और आईफोन 18 प्रो मैक्स का जो है $1,299 तक का जो है डॉलर्स का एक प्राइस एस्टिमेशन दिया गया है। और उसके साथ साथ डिफरेंस क्या है इनका बाकी एंड्रॉयड ब्रांड से उसके बारे में हम बात करते हैं। सैमसंग और गूगल जैसे ब्रांड्स स्टोरेज ऑप्शंस कम करके जो है हमें फ्लैगशिप प्राइसेस को इफेक्टिवली इंक्रीज कर रहे हैं। अब एप्पल इसका ऑपोजिट स्ट्रैटेजी बना रहा है, यानी कि स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल्स को अफोर्डेबल रेंज में रखना और एक अल्ट्रा प्रीमियम मॉडल से एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करना। वाह भाई वाह, अच्छा है, वैसे काफ़ी अच्छा है। एप्पल वन और AI रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो एप्पल हार्डवेयर के साथ सब्सक्रिप्शन सर्विसेज भी फोकस जो है जा रहा है। फ्यूचर में एडवांस्ड AI फीचर्स इंक्लूडिंग सीरी AI, एप्पल वन सब्सक्रिप्शन, ये सब इसका हिस्सा बन सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एप्पल AI सर्विसेज के लिए मंथली फी चार्ज भी कर सकता है। अब देखते हैं किस तरीके से इन फाइनेंशियल प्लान्स को जो है एप्पल इंप्लीमेंट करता है, कोई चेंज होंगे या फिर ऐसे ही होंगे ये तो फिलहाल अभी नहीं पता है। ये सब स्पेकुलेशंस हैं, ये स्पेकुलेशंस कब कंफर्मेशन में बदलेंगे ये तो वक्त ही बताएगा। मगर मेरा तो यही कहना है कि यार एक दिन मैंने अपने AI से एक सवाल पूछा था कि भाई तुम जानते हो कि AI का होना कितना बेनिफिशियल है लोगों के लिए, नॉलेज के लिए, एजुकेशन के लिए, तो तुम ये फ्री क्यों नहीं कर देते। तो उस AI मॉडल ने मुझे रिप्लाई दिया कि बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने सर, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ, मगर बात यह है कि AI के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगता है उसको तो थोड़ा वसूल करना पड़ेगा ना, इसलिए ये पैसा लगाते हैं। मैंने बोला अच्छा अगर ऐसा है तो वर्ल्ड के जितने भी बिलियनर्स हैं या फिर रिच कंट्रीज हैं या फिर कंट्रीज हैं सब एक अमाउंट पूल करें और वो वर्ल्ड के लिए AI डेवलपमेंट के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए जहाँ पे इस अमाउंट को दिया जाएगा और जिसे AI का R&D चलेगा। तो बोले बिल्कुल अच्छा ओपिनियन है आपका, बहुत ही अच्छी बात कही है आपने, मगर बात यह है कि ये होगा नहीं होगा इसका पता नहीं हमें। बट देखिए ये सोच के देखिए, एक इंसान यहाँ बैठ के बता रहा है कि ऐसे करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में एक बॉडी बनाते हैं, एक सोसाइटी जैसा कुछ या फिर एक कम्युनिटी जैसा एक वो बनाते हैं जिससे जो है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट डिफरेंट बिलियनेयर्स जिनके भी पास पैसा है वो सारे पैसा पूल ऐसे करेंगे और वो पैसा AI के R&D के लिए यूज़ होगा जो सारी कंट्रीज को बेनिफिट करेगा। मगर ये होगा नहीं होगा ये तो खुदा ही जाने। फिलहाल यहाँ पे हम राघव, चैतन्य और सुवर्णा की आवाज में चांद मेरा दिल का गाना सुनते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: short break. Commercial Bank presents CB 2026 Million Rials Dream.
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे. जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस.
0: जीतने के चार रास्ते. पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए. हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन.
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है.
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन. और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक 106.3 FM रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.

0: वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में अभी 9:21 हो रहे हैं और यहां पे जो है एक बहुत ही बढ़िया अपडेट हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत ही प्यारी चीज है, अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं या फिर जर्नलिज्म में थोड़ी बहुत रुचि रखते हैं तो कतर न्यूज एजेंसी ने अपने 2026 ट्रेनिंग प्लान के तहत द मल्टी मीडिया जर्नलिस्ट नाम का एक 3-day ट्रेनिंग कोर्स जो है लॉन्च किया है। अब इस कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है मैं बता देता हूँ। जर्नलिस्ट को मॉडर्न डिजिटल मीडिया एनवायरमेंट्स के लिए तैयार करना और ऐसे मीडिया प्रोफेशनल्स को डेवलप करना जो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए इंटीग्रेटेड कंटेंट जो है बना सके, रैपिडली चेंजिंग मीडिया इंडस्ट्री के साथ अपने स्किल्स को अपडेट करना। कोर्स का कंटेंट है कॉम्प्रिहेंसिव जर्नलिज्म के कॉन्सेप्ट्स और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया के लिए राइटिंग और एडिटिंग स्किल्स, रिपोर्ट्स और विजुअल स्टोरी टेलिंग की प्रिपरेशन, मल्टीमीडिया कंटेंट प्रोडक्शन टेक्निक्स, जर्नलिज्म में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एप्लीकेशंस और उसका इफेक्टिव यूज कैसे किया जा सकता है। अब इनके एक्सपेक्टेड इंपैक्ट क्या क्या है, नेशनल मीडिया टैलेंट को डेवलप करना, मीडिया कंटेंट की क्वालिटी और प्रोडक्शन एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और जर्नलिस्ट को एआई और डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल के लिए इक्विप करना। एक एआई इंटीग्रेटेड जर्नलिज्म जो है एक नया एरा है, उसके लिए उनको इक्विप करना, रेडी करना। तो यही बात बताते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.
3: Commercial Bank, your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
4: In association with Naseem Healthcare, Naseem Surgical and Medical Center, Sea Ring Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

के और सुनिधि चौहान की आवाज में सुना हमने बहुत ही खूबसूरत गाना। आप सुन रहे हो रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। स्टेशन क्लॉक में 9:33 हो चुके हैं और यहाँ पे जो है काफी बढ़िया एक खबर हम बताना चाहेंगे, मगर कॉन्टेक्स्ट जरा सेट कर दूं। देखिए, बड़े बड़े दिग्गजों के पांव सिर्फ फीफा वर्ल्ड कप में ही नहीं कांप रहे हैं, मगर क्रिकेट के ग्राउंड में भी कांप रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश का 3-मैच ओडीआई सीरीज जो है फाइनली खत्म हो चुका है और लास्ट मैच में अपने इज्जत को बचाने के लिए, थोड़ा बहुत अपने आप को बढ़िया दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कैसे कैसे करके मैच जो है जीत ही लिया है। और अगर हम उस मैच के बारे में बात करें तो बांग्लादेश ने जो है 274 रन स्कोर किए थे एंड ऑस्ट्रेलिया ने 277 स्कोर किए, इससे वो मैच जीत गए थे, जिसमें कनॉली जो है कूपर कनॉली उनके सेंचुरी के कारण जो है ये मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में आया, नहीं तो फिर ये कहीं और ही चले जाना था। और बांग्लादेश ने जो है फाइनली ये सीरीज जीत लिया है। ऑस्ट्रेलिया बांग्लादेशी सॉयल में एक ओडीआई सीरीज हार चुकी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का डाउनफॉल का एक शुरुआत है, मे बी वर्ल्ड कप 2027 जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसमें भी ये ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाएंगे, हो जाए तो हम भी बहुत खुश हो जाएंगे, कोई जाए तो ले जाए, मेरी लाख दुआएं पाए ऑस्ट्रेलिया को बाहर करके, मज़ा आ जाएगा, बट देखते हैं क्या होता है। फिलहाल अभी का जो हाल है ऑस्ट्रेलियन टीम का उतना बढ़िया लग नहीं रहा है। अभी यही बात बताते हुए हम भी जरा आगे बढ़ते हैं, तुम मिले मूवी का गाना प्ले करते हैं केके की आवाज़ में, दिल इबादत। Stay tuned, यह रेडियो ओलिव 106.3 FM और मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: माँ मुझे छोटे एड ब्रेक्स दिखाई दे रहे हैं माँ।
1: ऑल एफ शॉर्ट ब्रेक।
0: जादू
2: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
2: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
2: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। Doha Bank, Lulu, Mastercard, Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
4: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: Malabar Gold and Diamonds Bindas Morning. Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
4: Commercial Bank. Your future grows when your savings grows. Save more, dream bigger. Win up to 5 million riyals with Commercial Bank.
6: In association with Naseem Healthcare. Naseem Surgical and Medical Center, Searing Road. Healthy smiles anytime. For more information, call 4411 1133.

आप सभी का फिर से एक और बार स्वागत है। यह है बिंदास मॉर्निंग्स, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे जो है धीरे धीरे टाटा बाय-बाय करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अभी स्टेशन क्लॉक में 9:52 हो रहे हैं। थोड़ी देर में कशिश यहाँ पे आ जाएगी आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातें करने के लिए, गाने सुनाने के लिए, गुनगुनाने के लिए और ढेर सारे किस्से, खबरें, कहानियाँ शेयर करने के लिए। तो मैं ज़रा टाटा बाय-बाय करके निकलता हूँ और साथ साथ मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपने रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानिए क्या किया फिर। सीधा जाइए रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज में, विच इज़ radioolive.qa, और आप चेकआउट कीजिए हमारे पेज को, हमारे कंटेंट को। आपके फीडबैक्स जो है आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं या फिर सीधा व्हाट्सएप पर भी आप मुझे फीडबैक भेज सकते हैं 3311063 पर। उसके साथ साथ आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स जो आपके घर में हैं, गांव में हैं या फिर वर्ल्ड में कहीं पर भी है, उनके पास मौका है हमारे साथ इस जर्नी में जुड़ने का। क्या करना है? बहुत सिंपल है, सिर्फ रेडियो ऑलिव का जो ऐप है, जो ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों में अवेलेबल है, उसे डाउनलोड करना है और फिर बस आप बन गए हिस्सा हमारे इस जर्नी का। और यही बोलते हुए ज़रा हम भी निकलना चाहेंगे। एकदम से कशिश सामने आ गई तो मैं भी ऐसे हकलाने लग गया कि ये क्या हो गया, कौन है ये सुंदर लड़की जो एकदम से सामने आ गई। मतलब तनिषा थोड़ी देर पहले आई थी तो वो रोशनी अभी तक हटी नहीं थी, एकदम से कशिश भी दिख गई तो मैं एकदम से बौखला सा गया था। बट या, और यहाँ पे जो है एक गाना भी हम आपके लिए स्पेशली प्ले करना चाहेंगे। देखिए ये गाना सुन के आप सोचोगे कि अरे सुदेव यार क्या बात कर दी आपने।

11th में फेल होने के बाद जब मम्मी को मैंने बताया था, मम्मी ने यही बोला था कि मुंह छुपाने की बातें अभी नहीं करते, तू सामने आ पहले करके. बट एनीवे वो बात याद करते हुए हम भी जरा टाटा बाबाई करते हैं केके की आवाज में, जिस मुंह का गाना प्ले करते हुए जरा जाते हैं और याद दिलाते हैं कि भाई जिंदगी में कोई भी दिक्कत हो, मुश्किलात हो, हमेशा याद रखना, जियो बिंदास.

0: परी परियों की रानी आपकी
1: जवाब दो
0: सारे सवालों का जवाब बन के आपकी कशिश आ चुकी है एसपी बाला सुब्रमण्यम जी की आवाज में मैंने प्यार किया मूवी से ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो ऑलिव पर लाइफ मस्त है शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ एंड शो की शुरुआत बड़े ही अमेजिंग वाले गाने से हुई है मेरे मॉम डैड जब आई थिंक 9th-10th स्टैंडर्ड में थे तब ये मूवी रिलीज हुई थी एंड तब ना अलग कैरेक्टर से रिलेट किया करते थे और अब अलग कैरेक्टर से रिलेट करते हैं ये स्टोरी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब ये मूवी आई थी तो मेरे डैड और मेरे मॉम जो है वो इस मूवी के मेन लीड के साथ रिलेट करते थे यानी सलमान खान के साथ रिलेट करते थे लेकिन अब कहीं ना कहीं वो आलोक नाथ के साथ रिलेट करते हैं टाइम टाइम की बात है देखो खैर आज बहुत सारा खास खास जो है सामान लेकर आई हूँ मैं आपसे शेयर करने के लिए सामान इन अ सेंस कॉन्टेंट ठीक है बातचीत करने वाले हैं कुछ बहुत ही अच्छी चीज़ों पे सो उसके लिए कितने रेडी हो 3311063 पर आकर जल्दी जल्दी बता दीजिए मुझे एंड क्या कुछ आज खास होने वाला है सब मैं बताऊँगी थोड़ी सी देर में क्योंकि आधा जून जो है वो निकल चुका है पता ही नहीं चला कि आधा साल हमने कैसे सरवाइव कर लिया मतलब मुझे तो लगा था कि 2026 या तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा या तो बहुत ही टफ होगा लेकिन ना ये बहुत ही अच्छा जा रहा है और ना ही बहुत ही टफ हो रहा है सो पता नहीं चला ऐसे पलक झपकते झपकते कब जो है जून आ गया एंड आज 15 जून भी हो गई है बातचीत करेंगे डिटेल में लेकिन उससे पहले अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर ये गाना धीरे धीरे और अच्छा लगता जा रहा है लूप पे प्ले कर रही हूँ मैं चुनरी चुनरी लेट्स गो है जवानी तो इश्क होना से एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास

0: यार अगर मुझसे पूछो तो मैं तो यही बताऊंगी,
1: दिल का बता दे चाहूं मैं आना,
0: कि आप तो मुझे बहुत चाह लो एंड मेरे दिल का पता जो है आपको पता तो है। 3311063 106.3 रेडियो ऑलिव पर मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। आज मैं व्हाइट कलर पहन के आई हूँ, सो मैं बहुत ज्यादा कूल फील कर रही हूँ, लेकिन हर चीज करने में डर भी लग रहा है कि कहीं पेन की इंक जो है वो ना लग जाए, कहीं अगर कुछ खा रही हूँ तो वो ना गिर जाए, कहीं टच जो है दीवारों से टच ना हो जाऊं मैं, ताकि जो व्हाइट है ये खराब हो गया अगर तो फिर धोने में बहुत मेहनत लग जाएगी यार। अडल्टिंग शायद इसी को कहते हैं, अजीब अजीब चीजें जो है उसकी टेंशन ले रही हूँ मैं। खैर टेम्परेचर की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगी। दोहा की अगर मैं बात करूँ तो इस वक्त टेम्परेचर 41 डिग्री सेल्सियस हो रहा है एंड आज का मैक्सिमम टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा एंड लोएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री हो जाएगा रात तक। तो देखो आपको अब लगेगा कि थोड़ी सी गर्मी जो है वो कम पड़ रही है, लेकिन देखो वैसे भी आप पूरे टाइम मुझे पता है कि अंदर रहते हो एसी में रहते हो तो इतना कुछ दिक्कत है नहीं, इसीलिए कूल सॉन्ग ऑफ द आवर एंजॉय करो। बाकी आकर बॉलीवुड की कोई गपशप जो है वो मैं आपको देने वाली हूँ।
2: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
3: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है, कूल सॉन्ग।
0: बिलाल सईद का गाना है लंबियां जुदाइयां, लेकिन हमारी जो जुदाई है ना ये इतनी लंबी नहीं होने वाली है। वापस लौट के आऊंगी इस गाने के उस पर। 3311063 पर आइए मुझे हाय हेलो कह दीजिए, मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

को एक बार इस गाने में नोटिस करना, वो वही स्टेप कर रही हैं जो धुरंधर वन में कर रहे थे। इस इंसान के पास और कोई स्टेप है ही नहीं और हर बार वायरल है ये। हलचल मूवी से रफ्ता रफ्ता गाना आपने एंजॉय किया, रफ्ता रफ्ता तो नहीं, फास्ट फास्ट आपने ये रफ्ता रफ्ता गाना एंजॉय किया। पता नहीं मुझे मैं क्या बोल रही हूँ, लेकिन हलचल मूवी एक ऐसी मूवी है जो मुझे हमेशा मेरे बचपन की याद दिला देती है और वो स्ट्रेस फ्री जो टाइम था उसकी याद दिला देती है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड सच में जब लाइफ एक्चुअल में बहुत मस्त थी ना, उस टाइम का की याद आती है मुझे काफ़ी। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार उस टाइम में ये क्यों सोची थी कि बड़ा बड़ा होना है, जहाँ मन चाहे वहाँ जा सकती हूँ, एंड मम्मी पापा से परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी और किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे यहाँ लेके जाओ, एंड जितनी आइसक्रीम चाहूँ उतनी आइसक्रीम खा सकती हूँ। अब मुझे कहीं जाने का मन ही नहीं करता, घर पे रहने का मन करता है। आइसक्रीम मैं खा ही नहीं सकती, मुझे सर्दी हो जाती है। आम मैं खा नहीं सकती, मुझे पिंपल हो जाता है। ये कैसी आज़ादी है? खैर, ये जो हमारे रोज़मर्रा का स्ट्रेस है ना, इसे कम करने का मैंने एक तरीका देख लिया है, एंड ये तरीका बहुत अच्छी तरीके से काम करेगा, क्योंकि हम रहते हैं कतर में जहाँ पे हमें पानी देखने को कहीं से भी मिल जाएगा। मतलब आप कोई भी रैंडम घर की खिड़की खोलो, आपको सामने पानी दिखेगा। सो बस आज उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि पानी देखने से आपका स्ट्रेस जो है वो कैसे कम हो जाता है। सो क्योंकि आपके ब्रेन को जो है पानी एक ऐसा पीसफुल मेडिटेटिव सा सिग्नल भेजता है जिससे आपका माइंड काम हो जाता है, आपका हार्ट जो है वो काम हो जाता है। अब इसके पीछे जो है साइकोलॉजिकल ही नहीं, साथ में साइंटिफिक चीज़ें भी ये जो है वो जुड़ी हुई हैं। आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो ड्रॉप हो जाता है पानी को देखने से, आपका स्ट्रेस हार्मोन जो है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं वो तुरंत से ड्रॉप हो जाता है, हार्ट रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, एंड आपका ब्लड प्रेशर जो है वो भी नॉर्मल होने लग जाता है। आपका जो डाइजेशन है वो भी कहीं ना कहीं जो है सूदिंग हो जाता है। अगर मैं ब्रेन रेस्ट की बात करूँ तो हमारी रोज़मर्रा की बिजी लाइफ का जो स्क्रीन्स हम देख रहे हैं, जो सीन्स हम देख रहे हैं, उसका दिमाग पे काफ़ी बुरा असर होता है एंड काफ़ी सारी चीज़ें डैमेज हो जाती है अंदर। तो उससे भी जब आप पानी को देखते हो, जब आप किसी अच्छी खूबसूरत वाटर बॉडी को देखते हो ना, सो वो भी काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। एंड अगर मैं बात करूँ हैप्पी हॉर्मोन्स की, सो ब्लू स्पेसेस के पास बैठने से जो है ब्रेन में डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे जो केमिकल्स हैं वो रिलीज होते हैं, और ये केमिकल्स जो है आपका मूड इंस्टेंटली अपलिफ्ट करते हैं और एंजाइटी को जो है बहुत बहुत बहुत दूर फेंक देते हैं। तो देखो अगली बार जब भी थोड़ा सा भी स्ट्रेसफुल माहौल लगे या थोड़ा सा भी ऐसा लगे कि यार मूड अच्छा नहीं लग रहा है, तो बस आप जो है किसी अच्छी सी खूबसूरत सी वाटर बॉडी के पास जाके बैठ सकते हैं, चाहे वो कॉर्निश हो, वो दोहा पोर्ट हो, आप जाइए वहाँ बैठिए, एक चाय का जो है वो ग्लास लीजिए, करक कॉफ़ी जो आपको अच्छा लगता है आप वो लीजिए, और साथ में बैकग्राउंड में ये गाना चलाइए। आई एम डैम श्योर आपको बेटर फील होगा। मैं हूं आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में, स्टे ट्यून रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास।

किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए.
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ.
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की.
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो. आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063. Life.

क्योंकि लाइफ मस्त है। रेडियो ओलिव पर ओलिव रिवाइंड।

0: सुंदर हूँ, इन नजर तो खैर लगी जो आती है। खैर कोई और नहीं बोल रहा है तो मैंने सोचा कि खुद ही बोल लूं। वेलकम टू 106.3 रेडियो अलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए जो है लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड मुझे कोई मतलब मेरी आजकल चलते फिरते तारीफ नहीं कर रहा है। मैं इंडिया में थी ना तो लोग मुझे से चलते फिरते मेरी तारीफ कर देते थे कि ओ माय गॉड योर हेयर इज नाइस, ओ माय गॉड योर ड्रेसिंग सेंस इज सो नाइस, ओ माय गॉड आई लाइक योर स्पेक्स। लेकिन यहाँ पे सभी एकदम औसम दिखते हैं, मैं स्टैंड आउट कर ही नहीं पा रही हूँ। अलग अलग चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, इंस्टाग्राम पे नए नए वायरल ट्रेंड्स देख रही हूँ। सो मैंने सोचा कि ये काम मैं खुद के लिए कर रही हूँ तो क्यों ना आप लोगों से भी शेयर कर दूँ, तो आपको भी हो ना थोड़ा सा ऐसा अलग सी अच्छी वाली फीलिंग आ जाए। सो मैंने ना अभी फैशन ट्रेंड्स की के लिए जब सर्च करना शुरू किया तो मैंने देखा कि अभी एक ऐसी चीज़ है जो मैं बचपन में पहना करती थी एंड वो वापस ट्रेंड में आ गई, एंड दैट इज़ बलून ट्राउजर्स और बलून स्कर्ट्स। सो ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गए। बलून स्कर्ट्स और ट्राउजर्स में कुछ नहीं होता, नीचे एक स्ट्रिंग जो है वो लगी रहती है जिससे आप नीचे वाले जो पोर्शन है उसको टाइट कर सकते हो, सो एक बलून जैसी चीज़ बन जाता है। अब इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी का प्रोपोर्शन जो है वो इक्वल दिखने लग जाता है एंड आपके लेग्स जो है वो इलॉन्गेटेड दिखने लग जाते हैं जिस वजह से आपकी हाइट लंबी दिखती है। एंड जेंजीज का फैशन ये वापस कहा जा रहा है, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे बचपन भी पहना दिया था सो टेक्निकली तो जेंजी फैशन ही हुआ क्योंकि मैं जेंजी और मैंने बचपन में पहना हुआ है। सो खैर अगर आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे जो है शेयर कर सकते हैं 3311063 पे। वैसे मैं आपको बस ये बताने आई थी कि बलून स्कर्ट्स और बलून ट्राउजर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वायरल चल रहे हैं इस वक्त, एंड स्पेशली अगर मैं बात करूँ ऑलिव कलर में या बेज कलर में या ब्राउन कलर में अगर आप ले रहे हैं सो वो सुपर सुपर सुपर ट्रेंडी हो जाएगा। सो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। एंड क्या आपने बलून ट्राउजर्स या बलून स्कर्ट ट्राई किया हुआ है ये मुझे आके बता दो जल्दी जल्दी फटाक से 3311063 पे। फिलहाल इस फैशन फ्रेश वाले फैशन ट्रेंड के बाद जो है एक ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर तो बनता है।
1: रेडियो ऑलिव पर फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश फ्रेश ये गाना फ्रेश है। फ्रेश सॉन्ग ऑफ द ईयर ये गाना
0: कॉकटेल 2 मूवी का ये गाना है अरिजीत सिंह की आवाज में और सुनिधि चौहान की आवाज में। गाने का नाम है तुझको। सो इसे एंजॉय करो, बाकी लौट कर आओ, मैं जरा चाय पी कर आती हूँ। स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जियो बिंदास। आकर जरा सुदेव के साथ ऑलिव अपडेट्स भी एंजॉय कर लीजिएगा।

listening to Radio Olive 106.3 FM. गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ.

0: trek. Brought to you by Dana Tal Pahar, the ultimate Katri adventure. Souq Waqif Al Khor.
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 11:09।
2: फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। No matter where the game is, identity हमेशा साथ रहती है। और यही है द हिवारी इनिशिएटिव, जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स, एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।
3: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
4: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
3: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
4: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
3: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
5: This is
6: Vani Bhanushali.
7: Hey, this is Liana
8: D'Cruz. This is me, Hrithik Roshan.
9: Hi, I'm Alia Bhatt.
10: Hi, I'm Vivekanand Oberoi, and you're listening to Radio Olive, Jio Bindas.

0: इतने साल हो गए ये गाना सुनते हुए, आज तक हाय हुक्कू का मतलब नहीं समझ आया। क्या होता है हाय हुक्कू? क्या खाने की चीज का नाम है? क्या गाड़ी का नाम है? क्या है हाय हुक्कू? 3311063 ये नंबर है, इस पे आके बताओ यार आखिर ये हाय हुक्कू क्या होता है। वेलकम बैक 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड हाय हुक्कू क्या है ये तो आप मुझे बता ही दोगे, है ना। 3311063 पर जो है मैसेज करके ऑडियो नोट भेज के कि ये हाय हुक्कू क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है कि क्या होगा ये हाय हुक्कू? वैसे हाय हुक्कू जो भी है एक फीलिंग तो मुझे लग रही है, खैर कि हाय हुक्कू एक टाइप की फीलिंग है जो मुझे आ रही है कल के मैच देखने के बाद। हाँ जी, देखिए फीफा का मैच तो सभी देख रहे हैं ना, आपको पूरी रिपोर्ट जो है वो मिल ही रही है रेडियो ऑलिव पर, लेकिन मैं आपको बताने वाली हूँ T20 वर्ल्ड कप 2026 जो चल रहा है उसके बारे में। सो अगर मैं बात करूँ तो कल का मैच था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिसमें 64 रन से इंडिया ने जो है वो जीत हासिल करी है। इंग्लैंड और वेल्स में ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है चल रहा है, जिसमें दीप्ति शर्मा और स्मृति मंदाना ने कमाल का परफॉर्मेंस दिया। अगर मैं इंडिया की बैटिंग की बात करूँ तो इंडिया ने पहले खेलते हुए 20 ओवर्स में 170 जो है रन बना लिए थे 6 विकेट के नुकसान पर, एक स्ट्रॉन्ग टोटल बनाया था। एंड स्मृति मंदाना ने जो है एक बढ़िया हाफ सेंचुरी जो है वो भी लगाई है। एंड अगर मैं दीप्ति के जादू की बात करूँ तो पिच पर स्पिन का जादू जो है वो चलाते हुए दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट्स लिए। एंड मैं क्या बात करूँ यार, क्या क्या क्या बात करूँ। अब अगला मैच जो है इंडिया का वो 17 जून को है, सो मैं तो देखो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो? और फीफा देख रहे हो या T20 लीग देख रहे हो, दोनों के बीच में कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ये बताओ मुझे 3311063 पर जो है मैसेज करके ऑडियो नोट भेज के। फिलहाल एक कूल वाला सॉन्ग, यानी सच में अमेजिंग वाइब वाला सॉन्ग जो है वार आपके रेडियो सेट पर।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर।

0: हाय
1: तुमसे मिलके दिल का है जो हाल क्या कहें हो गया है कैसा ये कमाल।
0: देखो जब भी आप लोगों को स्ट्रेस होता है आप लोग परेशान होते हो मेरा बस आपसे यही कहने का मन करता है जस्ट से धूम तरा धूम्मा एंड मूव ऑन। मैं हूं ना मूवी से सोनू निगम की आवाज में ये ट्रैक आपने एंजॉय किया 106.3 रेडियो अलिफ पर। मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूं एंड मुझे जो है काफी सारी चीजें इंटरनेट पे ऐसी मिल जाती है जो मुझे लगता है कि भाई ये भी है इस दुनिया में, क्या जरूरत थी ऐसी चीज की। लेकिन फिर जब ज्यादा सोचती हूँ तो लगता है कि इट मेक्स सेंस। सो ऐसी ही एक चीज मैंने अभी इंटरनेट पे पढ़ी है जो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। पर मैं उससे पहले आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि आप कोई भी डिसऑर्डर या कोई भी ऐसी चीज इंटरनेट पे पढ़ते हो या आपको पता चलती है कि यार ये जो है एक ऐसा डिसऑर्डर है जो जिसके सिम्टम्स यही है। सपोज ADHD अगर मैंने आपको बोला, सो ADHD एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आप जो है बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हो, जिसमें आप फोकस नहीं कर पाते हो, जिसमें ये होता है वो होता है और ऐसे सारे आपको चीजें बता दी जाती है तो आपको लगता है कि यार ये तो मुझे भी है। बस वैसे ही हर दूसरे सिंड्रोम को देख के मुझे ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये वाली चीज तो मुझे भी है, क्या मैं भी बीमार हूँ। सो अगर आपको कोई भी ऐसा डिसऑर्डर है सो आप बीमार नहीं है, इट्स अ मेंटल कंडीशन, यानी किसी को भी हो सकता है लेकिन सही टाइम पे डायग्नोस होना जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है। सो अभी हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसऑर्डर की जो काफी वियर्ड। सो अगर आपके आसपास कोई जोर जोर से सांस लेता है या चप चप चप चप करके खाना खाता है और आपको बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ से और आप इरिटेट हो जाते हो तो ये जो है एक डिसऑर्डर है जिसे सिलेक्टिव साउंड से जो है दिक्कत होती है एंड इसे एक सेंसिटिविटी सिंड्रोम जो है कहा जा सकता है। इसको कहते हैं मिसोफोनिया। इसे जो है अगर कुछ ऐसी आवाज़ें आपके आसपास आ रही हैं जिससे आपको दिक्कत हो रही है तो आपको हो सकता है मिसोफोनिया हो। जैसे कोई अगर कॉन्स्टेंटली वो टिक टिक टिक टिक वाला पेन जो है वो क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक कर रहा है तो आपको उससे इरिटेशन हो रहा है, या जोर जोर से सांसें ले रहा है, चप चप करके खा रहा है, या शू जो है वो टैप कर रहा है। सो अगर आपको इन सब चीज़ों से दिक्कत होती है तो हो सकता है कि आपको ये वाला डिसऑर्डर हो। मेरा मन जो है आपको डराने का बिल्कुल नहीं था लेकिन मैं बस आपको अपडेट कर रही हूँ कि यार ऐसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। सो अगर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों से प्रॉब्लम हो रही है तो हो सकता है कि ये बाद में एक मेजर प्रॉब्लम बन जाए। सो चेकअप कराना इंपॉर्टेंट है। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आपके लिए आ रहा है, गाने का नाम मुड़ी मुड़ी। शिल्पा राव की आवाज में पा मूवी से ये ट्रैक आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। अगर थोड़ी और अच्छी वाली बात करेंगे आपके लिए कुछ बहुत अमेजिंग चीजें चुन चुन के मैं लेके आई हूँ। सो स्टे ट्यून रहो और ये गाने एंजॉय करते रहो। मैं हूँ आपकी कशिश, कहते रहो जियो बिंदास।

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स।
2: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 FM और वक्त हो गया है जोहर की अजान का।

माही और रांझा दोनों चुप हैं। बोल तो सिर्फ मैं रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है। इस दुनिया में जितनी बातें हो सकती है सब मैं कर देती हूँ, किसी के बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। कोई बात नहीं, इसीलिए शायद इस प्रोफेशन में आई हूँ और इसीलिए शायद आप लोगों से बातचीत कर रही हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफर, मैं हूँ आपकी कसूस और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड वक्त हो गया है आपको एक प्यारी सी मूवी जो है वो रिकमेंड करने का। अब देखिए वीकेंड जा चुका है, आई एम डैम्स, और आपने कुछ ना कुछ अच्छा सा कंटेंट जो है वो उठाया होगा एंड देखा होगा, लेकिन अब क्या आने वाले वीक में क्या और खाना खाते खाते क्या देखा जाए ये आप सोच रहे हो। सो मैं एक क्लासिक मूवी जो है वो आपको रिकमेंड करने वाली हूँ। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी ये मूवी, नाम तो सुना ही होगा इस मूवी का, एंड नहीं तो हो सकता है आपके पेरेंट्स ने देखी होगी। सो उनसे एक बार जाकर जरूर पूछना कि ये मूवी आपने देखी है नहीं देखी है। सो ये मूवी, मैं अपनी स्टोरी आपको बताती हूँ, ये मूवी मैंने अपने दादू के साथ बैठकर देखी थी। एक दिन ऐसे ही टीवी पे आ रही थी एंड मैंने देखी, एंड जब मैंने देखनी शुरू करी मुझे इतना मजा आया कि फिर मैंने ये मूवी स्पेशली लगाई एंड शुरू से देखी। सो मूवी का नाम है सत्ते पे सत्ता। 1982 की ये मूवी है और एक अल्टीमेट बॉलीवुड मसाला क्लासिक है। फुल ऑन एंटरटेनमेंट की गारंटी आपको इस मूवी में मिल जाती है। और ये हॉलीवुड की एक मूवी थी, सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स, उससे हेविली इंस्पायर्ड, हेविली मतलब बहुत ही ज़्यादा हेविली। कई दो सीन्स जो है वो भी पूरे तरीके से इंस्पायर्ड है एंड बाकी मूवी को इंस्पायर्ड ही कहा जा सकता है। राज एन सिप्पी जी ने अपने ज़बरदस्त देसी ट्विस्ट जो है वो इस मूवी में डाला है। सो ये जो स्टोरी है ये घूमती है सात भाई जो साथ में रहते हैं उनके आसपास, जो जो है जिनकी शादियां होती हैं, किस तरीके से उनकी लाइफ जो है बीत रही है। अमिताभ बच्चन जी की ये मूवी है एंड हेमा मालिनी जी जो है वो आपको इस मूवी में देखने को मिल जाएंगी। एंड एक ट्रिविया मैं आपको बताना चाहती हूँ, हेमा मालिनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो इस मूवी की शूटिंग कर रही थी तब वो प्रेग्नेंट थी। सो आपको वो भी ना ऐसे बीच बीच में ग्लिम्स अब आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगे। बहुत ही अमेजिंग एक्टिंग जो है सबने की, अमिताभ बच्चन का डबल रोल आपको देखने को मिलने वाला है। स्पॉयलर्स नहीं दूंगी मैं आपको, आर डी बर्मन जी का म्यूजिक है तो कई सारे ऐसे गाने हैं जो आपको रियलाइज भी नहीं होगा कि ओ यार ये गाने तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये मूवी मतलब ये गाना इस मूवी का है। सो बढ़िया से इंजॉय कीजिए। एंड मैं अगर इस मूवी को स्टार्स देने पर आऊँ, वैसे तो मैं कौन ही होती हूँ इतनी क्लासिक इतनी अमेजिंग मूवी को स्टार देने वाली, लेकिन फिर भी अगर मुझे स्टार देने हैं तो मैं 5 में से सॉलिड 5/5 जो है इस मूवी को देना चाहूँगी। तो जल्दी से जाओ फटाफट से, ये मूवी आपको YouTube पे भी मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। एंड उसके साथ साथ एक ऑलिफ फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर तो बनता है।

0: Fresh Song of the Hour.
1: Yegana.
2: Ocha Baridama.
3: गाने का नाम इश्क मस्तारा, मैं हूँ आपकी कशिश जियो बिंदास।

Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

सारी रात तो बस ये सोच के नींद नहीं आती है कि जो है 2 जून की रोटी से 15 जून की ब्रेड पे कैसे आ गए। इतने तेजी से दिन जा रहे हैं, दिन गुजर रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बैठ के सोचो तो टाइम जाता ही नहीं है, टाइम निकलता ही नहीं है। बहुत अजीब सी कंफ्यूजन सी हो रही है। खैर, सबसे बेस्ट बात तो ये हुई है कि फीफा शुरू हो गया है, सो अच्छे खासा जो टाइम है वो निकल जाता है मैच देखने में। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश, जो आपके लिए जो है लाइफ मस्त लेकर आ गई हूँ। एंड अगर मैं बात करूँ फीफा की, तो फीफा का जो क्रेज है वो हर जगह बराबर से चल रहा है, लेकिन इंडिया में जो है वो मुझे नहीं लगा था कि फीफा इतना ज़्यादा क्रेजी सीन रहेगा। मैं सोशल मीडिया देख रही हूँ एंड फीफा से इंस्पायर्ड साड़ी जो है वो आने लग गई है। लोग जर्सी वाली साड़ी पहन रहे हैं, और ऐसा नहीं कि जर्सी के साथ साड़ी पहन रहे हैं, जर्सी वाली साड़ी पहन रहे हैं, यानी साड़ी जो है वो एग्जैक्टली मैचिंग है टीम्स की जर्सी से। वाओ गाइस, मतलब T20 लीग का ऐसा मैंने फीवर नहीं देखा जैसा यहाँ पे अभी देख रही हूँ। सीरियसली यार, क्या सीन है? आप लोग फीफा को कैसे जो है एंजॉय कर रहे हैं? 3311063 पर जो है मुझे बता सकते हैं कहाँ पे स्क्रीनिंग देख रहे हैं, कतर का मैच देखा था या नहीं देखा था, आगे के मैचेस के लिए कितने एक्साइटेड है, कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, सब बताइए मुझे जल्दी जल्दी। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में इस गाने के उस पार। अमाल मलिक और श्रेया घोषाल की आवाज में यही गुजार दूं गाने का नाम है। गाना सुन के एंजॉय करके वापस आइए और कहते रहिए जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: स्टूडियो क्लॉक में इस वक्त हो रहे हैं 12:11।
0: दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
3: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर, विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: सत श्री अकाल जी, मैं हाँ हरभजन मान और तुसी सुन रहे हो कतर दा नंबर 1 हिंदी रेडियो स्टेशन रेडियो ऑल ऑफ 106.3 FM जियो बिंदास।

0: कितना क्यूट और अडोरेबल सा गाना है यार ये. कुछ नहीं हो रहा है पूरे गाने में, पूरे गाने में बस गुब्बारे गुब्बारे यही कह रहे हैं ये. कितना क्यूट सॉन्ग है यार, बिल्कुल मेरी तरह. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल ऑफ पर, मैं हूँ आपकी कशिश, शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ. एंड मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ सबसे ज़्यादा टफ उन लोगों की होती है जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ कर रहे होते हैं एंड उन्हें जो है उसे चार्ज करने में सालों लग जाते हैं. मतलब सालों तो मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, एग्जैजरेट कर रही हूँ, लेकिन उसको चार्ज करने में बहुत टाइम लगता है. सो बस सबसे मेजर एक प्रॉब्लम यही होती थी. लेकिन अब एक कंपनी है जिसने एक ऐसी टेक्नोलॉजी निकाल दी है जिसमें जितना टाइम आपको फ्यूल फिल इन करने में लगता है ना, बस उतना ही टाइम जो है लगेगा उस गाड़ी को फुल चार्ज करने में. देख लो यार, मतलब बढ़िया एकदम कॉम्पिटिशन जो है इलेक्ट्रिक कार्स में भी अब आने लग गया है. अब जो एक ड्रॉबैक था इलेक्ट्रिक कार्स में कि यार इनको चार्ज करने के लिए जो है दिक्कत होती है, इतने चार्जिंग स्टेशंस नहीं है या फिर इतने जो है एफिशिएंटली चार्ज नहीं होती, जल्दी चार्ज नहीं होती, अब उसका भी इंतज़ाम हो गया है. अब देखिए बस पेट्रोल पंप्स की लाइन जो है उसका मैं कुछ नहीं कर सकती, उस वेटिंग का मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अब आप जल्दी से जल्दी अपनी इलेक्ट्रिक कार को भी, अगर ये टेक्नोलॉजी आपकी कार के अंदर आ गई तो उसे आप चार्ज कर पाएंगे. कितनी जल्दी तरक्की कर रहा है यार ये देश दुनिया. मैं हूँ आपकी कशिश, थोड़ी सी देर में अमेजिंग वाली बातचीत जो है वो जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक कूल सॉन्ग ऑफ द आवर तो बनता है.
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

इस वक्त टेक्नोलॉजी यही गाना गा रही है कि कहीं वो मैं तो नहीं जो टेक्नोलॉजी आप ढूंढ रहे हैं। वेलकम टू 106.3 रेडियो ऑल ओवर, मैं हूँ आगी कशिश और शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई हूँ। एंड मैंने ना बहुत सारे मतलब बहुत बहुत बहुत सारे आर्टिकल्स जो है आधा आधा घंटा एक एक घंटा बैठ के पढ़े हैं ताकि मैं जो है आप लोगों को समझा सकूं। लेकिन यार मेरे भी तो पेशेंस का जो है एक परीक्षा हो जाती है, एक एग्जाम हो जाता है कि यार मैं पढ़ सकती हूँ या नहीं पढ़ सकती। लेकिन अब जो है स्मार्टफोन्स और ज़्यादा स्मार्ट होकर आएंगे एंड अब वो जो बड़े ईमेल्स मैसेजेस एंड जो बड़े आर्टिकल्स होते हैं ना उन्हें बिना कमांड दिए ही ऑटोमेटिकली आपको छोटे करके वो दिखाएंगे, समरी दे देंगे। यानी अब अगर आपकी आपके पार्टनर से लड़ाई हो जाए एंड वो आपको बड़े बड़े टेक्स्ट लिख के भेजे तो देखिएगा अपने आप आपका फोन उसको शॉर्ट में करके दे देगा, आपको बिल्कुल इतना लंबा जो टेक्स्ट है वो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। कितने स्मार्ट हो गए यार ये फोन। काश मेरी मन की बात जो है वो सामने वाले तक बिना कहे लिखे जो है वो पहुंचा सकते। इतना एडवांस नहीं हो पा रहा बस यार देखो टेक्नोलॉजी। मैं हूँ आपकी कशिश, मुलाकात होगी थोड़ी सी देर में। फिलहाल कुर्बान मूवी का अमेजिंग वाला गाना, वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग जो है आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए। सोनू निगम और सलीम अर्जुन की आवाज में। और मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदास।

मलंग होते होते वक्त हो गया है आपको टाटा बाय बाय करके जाने का। मैं हूँ आपकी कशिश 106.3 रेडियो ऑल ओवर शो। आप मेरे साथ लाइफ मस्त है एंजॉय कर रहे थे एंड देखिए अगर मेरे साथ बने रहेंगे तो लाइफ तो आपकी मस्त होती ही रहेगी। मतलब अगर अभी मस्त है तो अभी और मस्त हो जाएगी, फिर और ज्यादा मस्त हो जाएगी, फिर आप एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे जहां पे अब आप कहोगे कशिश इससे ज्यादा मस्त और क्या ही हो सकता है, फिर मैं एक और मस्त की डेफिनेशन जो है वो आपके लिए लिख दूंगी। देखिए मेरा कोई भी पॉइंट नहीं है आपसे आपको इरिटेट करने का, लेकिन मुझे भूख इतनी लग रही है इस वक्त कि मैं कुछ भी बोल रही हूँ। सो देखिए अगर आप के कोई फीडबैक्स हैं, कोई भी आप बातचीत मुझसे करना चाहते हैं, 3311063 व्हाट्सएप वाला नंबर है आपका, जब मन करे आप इसमें मैसेज कर सकते हैं एंड रेडियो ऑलिव के आरजे से कभी भी बात कर सकते हैं। साथ में हम ऑफिस में क्या कुछ मस्ती कर रहे हैं ये देखने के लिए आप रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल को जाके फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी आपको हम सब मिल जाएंगे देखने को। तो देखिए यार आइए जल्दी से जाइए, फॉलो बटन दबाइए और स्टे ट्यून रहिए 106.3 रेडियो ऑलिव पर। फिलहाल जाते जाते आपको ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर जो है ना वो मैं सुनाते हुए जा रही हूँ। सो ये अमेजिंग अमेजिंग वाला गाना श्रेया घोषाल की आवाज में, इसे एंजॉय करो और बाकी मेरे साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: Fresh Song of the Hour,
1: ये गाना।
2: अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, खाना खाते रहिए, जियो बिंदास कहते रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas. फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड.
1: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
1: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Hi there friends, this is DJ Suketu.
4: DJ Suketu.
3: You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
5: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
6: Radio Olive, I'm number one.
7: Olive Music Marathon. 1 hour. 1 hour. Non-stop back to back.

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर

0: ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी। एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा, नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर। हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Olive Music Marathon. 1 ghanta non-stop back to

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ऑल एयर
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: ऑलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
2: Mornings and night.

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम।

अनुप जैन की आवाज में बारिश है. एंड पता है ये गाना काफी सालों पहले आ गया था. यूट्यूब पे चुपचाप से बंदे ने डाल दिया है और यू नो दोज हु वर फैंस, जिन्हें पता था इस गाने के बारे में, उन्होंने जाकर सुना. बाकी ज्यादा कुछ खास लोगों को पता नहीं था, कुछ खास व्यूज नहीं थे इस गाने पे. एंड देन केम द इंस्टाग्राम का एरा, जब यू नो गाने वायरल होने लगे इंस्टाग्राम पे और इस गाने के बारे में कुछ इन्फ्लुएंसर्स को पता चला, कॉन्टेंट क्रिएटर्स को पता चला, उन्होंने इसके ऊपर रील बनानी शुरू करी और जो ही ये गाना क्रेजी वायरल हुआ है. तो बस कहना यही चाहती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए. आपके साथ भी अगर कोई काम अभी नहीं बन रहा है, इवेंचुअली बनेगा मेरी जान. You're listening to Radio Olive 106.3 FM. Darish Aage ji aapke saath Olive Recharge lekar a very good afternoon. This beautiful track. किस्मत मूवी से ये सुंदर गाना. यू नो आई हैव दिस थिंग कि कभी कभी ऐसे होता है ना, हम सबको ही होता होगा कि रैंडमली ऐसे रोने का मन करे पर रोना नहीं आ रहा है. एंड इफ दैट हैपेंस विद मी, मैं ये मूवी लगा के देख लेती हूँ. भाई जो ही फूट फूट के रोना निकलता है. देखो आइसक्रीम खाने का मन तो कभी भी कर सकता है इस वेदर में, सो इट्स ओके. Amazing tracks are lined up for you in this hour. और भी ढेर सारी बातें करनी है, बहुत सारे कमाल कमाल के गाने हैं. तो उसके पहले क्या करना होता है, आपके हाल चाल जानने होते हैं. 3311106 पर मैसेज कीजिए, बताइए कैसे हैं आप. How has the day been so far? Monday, June 15th का क्या मूड है जी, बताएं जरा. और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ 3 बिंदास.

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
2: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
1: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
2: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
1: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
0: डॉक्टर ऑनर, डॉक्टर ऑनर, ब्रॉट टू यू बाय नसीम हेल्थकेयर।
3: हेलो, आई एम डॉक्टर सारा सुतोहे फ्रॉम नसीम मेडिकल सेंटर अलखूर। डिड यू नो फ्लॉसिंग इज जस्ट एज इम्पोर्टेंट एज ब्रशिंग? इट रिमूव्स फूड पार्टिकल्स एंड प्लक फ्रॉम बिटवीन योर टीथ वेयर योर टूथब्रश कांट रीच, हेल्पिंग टू प्रिवेंट कैविटीज एंड गम डिजीज। विजिट अस एट नसीम मेडिकल सेंटर अलखूर फॉर अ हेल्थियर स्माइल। थैंक यू।
0: Dr. On Air, Dr. On Air, brought to you by Naseem Healthcare.
4: Hi guys, this is Jorita Gandhi.
5: Jorita Gandhi.
6: Radio Olive, I'm a number one.
4: You are listening to me on Radio Olive.
5: Radio Olive.
4: Gio Bindas.
6: Radio Olive, I'm a number one.
7: Olive Sunur Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.

0: Delisha.
1: कविता सेठ और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाज में वेकअप सेट से एक तारा ओनली ऑन रेडियो 11.6.3 एफएम. तनीषा आपके साथ ऑल ओवर रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर. और एक बहुत सुंदर चीज मैंने पढ़ी इंस्टाग्राम पे, तो मैंने सोचा ये तो आपसे शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो गौर से सुनिएगा. हमारी जिंदगी की थाली में 15 तरह के व्यंजन होते हैं. हमारी जिंदगी की थाली में 15 तरह के व्यंजन हैं. अगर रायते में नमक ज्यादा है तो बाकी जो 14 व्यंजन बचे हैं उनका आनंद लीजिए ना. पूरी थाली में रायता क्यों फैला रहे हैं मेरी जान. हाँ जी. सो देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन इन आवर लाइफ पैरेलली, यू नो, और कोई एक चीज अकॉर्डिंगली नहीं हो रही है या फिर कोई एक चीज सीधे रास्ते से नहीं जा रही है, थोड़ा सा डिटूर लेकर जाना पड़ रहा है. तो उस एक चीज की वजह से बाकी जो खूबसूरत चीजें हैं हमारी लाइफ में, जो ब्लेसिंग्स हैं हमारी लाइफ में, उन सबको इग्नोर कर देना, ये कोई सेंसेबल बात तो नहीं है ना. जी हाँ, अगर एक चीज़ ठीक नहीं हो रही है और 10 और है आपके पास जो कि बहुत खूबसूरत और अमेजिंग है, एंड यू आर ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ दोज थिंग्स, पीपल एंड एवरीथिंग, व्हाटएवर यू हैव इन योर लाइफ, तो उनके लिए ऐसे टाइम में ग्रेटफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड देन दिस वन थिंग विच इज़ नॉट गोइंग योर वे वो इतनी बड़ी लगेगी ही नहीं. यही फंडा होता है लाइफ का. जी, सेंडिंग फकीरा एंड द वॉइस ऑफ गुरनाम भुल्लर. स्टे ट्यून्ड ऑन जियो बिंदास.
2: Cool song.
3: Radio Olive par aane wala gana cool song of the hour.
4: Song of the hour. Song.
5: Kya baat hai sir? Kya baat? Ye baat hai.
2: Cool song.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: ओनली लगा और हो जा रिचार्ज।
3: ओलिव रिचार्ज रेडियो ओलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
6: In association with
7: Doha Bank,
1: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio 106.3 FM, Tanisha aapke saath, all over Radio chal raha hai yahan par. Aur bhai khabar aa gayi hai ki vehicles will be allowed to enter Meena District roads from 15th June, yani ki aaj se 15th October tak. ये जो इनिशिएटिव लिया गया है इट एम्स टू हेल्प विजिटर्स टू पार्क क्लोजर टू द शॉप्स कैफेज रेस्टोरेंट जो भी वो विजिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस समर हीट आपको ज़्यादा डिस्टेंस वॉक ना करना पड़े इसके लिए और ये जो एक्सेस है ये रोज 3 बजे दोपहर से लेकर रात 10 बजे तक मिलेगा आपको एंड एंट्री इन टू मीना डिस्ट्रिक्ट इंटरनल रोड्स विल बी ट्रीटेड एज अ सेल्फ पार्किंग टिकट And it is a one-way traffic system. The speed limit is 15 km per hour. Visitors must park only in designated areas. Overnight parking bilkul bhi allowed nahi hai, toh woh sab nahi karna hai. And fizul ki honking and ordering food or drinks from the vehicle is prohibited. So do not do that, meri jaan. And summer program also includes reduced valet parking rates. So uska bhi aap fayda utha sakte hain. And complimentary golf cart services selected areas mein. This is to make your summer more easier and feasible for you. तो जाइए मीना डिस्ट्रिक्ट में और बढ़िया अपनी इवनिंग्स जो है उन्हें स्पेंड कीजिए वहां पर फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सुनते रहिए रेडियो ऑल ऑफ चिल विद अस

are listening to Radio Olive 106.3 FM. फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में

0: पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लूलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम. शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. TNC अप्लाई.
2: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन.
3: हाय, दिस इज विपाशा बासु.
4: हाय, आई एम राजकुमार राव.
5: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा.
6: हाय, दिस इज दिशा पार्डी.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑल 106.3 FM.

You're listening to Radio 106.3 FM, Dhrisha आपके साथ. तुम्हें जो मैंने देखा हुए बड़ा ही कमाल गाना मैं हूं ना मूवी से सुना आपने, श्रेया घोषाल और अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में. और कोविड के बाद से जो वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड चला है, बहुत सारी कंपनीज ने ये फिगर आउट किया कि वर्क फ्रॉम होम से जो लोगों की प्रोडक्टिविटी है वो बहुत बढ़ रही है, यू नो, बिकॉज ईजियर स्पेस में है वो, तो वो आराम से अच्छा काम कर पा रहे थे. सो बहुत सारी कंपनीज ने तो उसे अडॉप्ट ही कर लिया है कि वर्क फ्रॉम होम ही करते हैं. फ्यू डेज यू हैव टू कम टू यू नो ऑफिस एंड देन रेस्ट वर्क फ्रॉम होम. पर कुछ लोगों ने इसका गलत फायदा भी उठाया है. जी, सो दिस हैपेंड इन चाइना. अ गाय, ही वॉज गिवन वर्क फ्रॉम होम. दे वर हैविंग अ मीटिंग, अ वर्चुअल मीटिंग, और मीटिंग ज्वाइन करने के लिए बोला गया तो पहले तो उसने अपना कैमरा बंद करके रखा था. सो नाउ ही वॉज फोर्स्ड कि भाई कैमरा ओपन करो, वी नीड टू लाइक सी यू एंड टॉक टू यू. तो बंदे ने अपना कैमरा ऑन किया, उसने ऐसे बैकग्राउंड में ग्रीन स्क्रीन लगाई एंड ही वॉज ऑन अ रोलर कोस्टर. Yes, वो एक रोलर कोस्टर पे बैठ के अपनी वर्चुअल मीटिंग अटेंड कर रहे हैं. अब इससे हो गया है chaos. लोग कह रहे हैं कि ये वर्क फ्रॉम होम का जो गलत फायदा उठाया जा रहा है इसे तो बंद ही कर देना चाहिए पूरी तरह से. तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार. अगर आपको सहूलियत दी गई है तो उसका सही तरीके से इस्तेमाल करो. ऐसे नाजायज आप उसका फायदा उठाओगे तो ये तो होगा ही, है ना. सेंडिंग अमेजिंग ट्रैक्स टू यू एंड्रयू बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
4: Olive Recharge.
5: This hour is brought to you by
6: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
7: In association with
8: Doha Bank,
7: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindas.
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है. हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कारामा सर्टिफिकेशन. पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा. एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपके ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है. इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए. अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक. बस विजिट कीजिए कारामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए. सर्टिफाइड बनिए. सर्टिफाइड के साथ बनिए.

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio All of 106.3 FM. Tanisha, aapke saath. All of Recharge chal raha hai ab.
2: Ye hai. Chalti phirti dictionary.
1: So, आज मेरी डिक्शनरी का वर्ड है फॉइल सिक, FOILSICK, फॉइल सिक. और हम सब ने ये कहीं ना कहीं महसूस किया है लाइफ में. सो व्हेनेवर वी मीट समबडी न्यू और एकदम ऐसे वाइब हमारी मैच कर जाती है, बी इट आर कॉलीग या फिर यू नो फ्रेंड्स बनते हैं नए नए या फिर आपके पार्टनर्स. एंड फॉइल सिक बेसिकली इज द फीलिंग जब आप ओवर शेयर कर देते हैं क्योंकि आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि मैं इस इंसान के साथ सब शेयर कर सकती हूँ और उस सब में ओवर हो जाता है थोड़ा. ऐसी चीजें जो कि आप शेयर नहीं करते यूजुअली, पर आप वो भी कर जाते हैं बिकॉज ऑफ द कंफर्ट. एंड देन लेटर ऑन व्हेन यू रियलाइज किया, अरे यार मैंने क्यों किया ये सब बोल के, क्यों मतलब व्हाट इफ दैट पर्सन वुड बी थिंकिंग अदर वे अबाउट मी या फिर नेगेटिव सोच रहे होंगे. दैट फीलिंग ना, वो जो थॉट्स चलती हैं दिमाग में, दैट इज कॉल्ड फॉइल सिक. सो व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू फेल्ट फॉइल सिक बताएं मुझे. 3311 1063 पर स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ थ्री बिंदास.

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: नमस्कार, मैं हूं आर माधवन। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM।

0: Tanisha.
1: You're listening to Radio All 106.3 FM. Tanisha ke saath aap Olive Recharge chal rahe hain par.
2: Lame jams.
1: So mera lame jams ka aaj ka sawal hai ki ek khushi naam ki ladki se चार्जिंग केबल ढूंढने के लिए पूछना है तो कौन सा गाना गाकर पूछेंगे जी. एक खुशी नाम की लड़की है, अब उससे पूछना है कि मुझे चार्जिंग केबल चाहिए तेरी, कहाँ पर ढूंढूं मैं, तो वो ढूंढने के लिए पूछने के लिए आप कौन सा गाना गाएंगे ये आपने मुझे बताना है. 3311 1063 पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कर दीजिए 4444 1063 पर. एंड स्टेट ट्यून्ड टू रेडियो ऑलिव 3 बिंदास.
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द ईयर.

0: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं। यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है। यहाँ हर चोट एक मेडल है। हारना मना है और डरना गुनाह है। यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है। और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है। बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन। FIFA की हर डिटेल के लिए सुनिए रेडियो ओलिव
1: इन एसोसिएशन विद।
0: डाउनलोड द सिटी एक्सचेंज मोबाइल ऐप नाउ टू सेंड मनी क्विकली एट द बेस्ट एक्सचेंज रेट्स।
2: ऑल्सो पाम स्विस गोल्ड बार्स आर नाउ अवेलेबल एट द बेस्ट प्राइस एट सिटी एक्सचेंज,
0: योर ट्रस्टेड रेमिटेंस पार्टनर।
3: एनकाई के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
4: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
5: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
4: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
5: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
4: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव and win.
6: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
7: Olive Recharge, Radio Olive 106.3 FM par Jio Bindas.
8: Olive Recharge.
9: This hour is brought to you by
10: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.
11: In association with
12: Doha Bank,
11: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: Tanisha.
1: You are listening to Radio Oliver 6.3 FM. Tanisha, you are with Oliver and George. And I have a question for Lame Jams.
2: Lame Jams.
1: थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मुझे लग रहा है सो एक बार फिर से सवाल सुनिए एक खुशी नाम की लड़की है अब आपको उससे चार्जिंग केबल चाहिए आपने उससे पूछना है कि कहाँ रखी है तूने मैं कहाँ ढूंढूँ इस चार्जिंग केबल को और ये आपने पूछते हुए गाना गाना है गाना गा के पूछना है बेसिकली तो कौन सा गाना गाएंगे ये आपने मुझे बताना है मैं हिंट दे देती हूँ अरिजीत सिंह का एक बड़ा ही सुंदर गाना है ये और शंघाई मूवी से अब इससे ज़्यादा तो मैं क्या ही हिंट दूँ यार गाना ही बता दूँ फिर मैं हैं चलो सोचो और बताओ 3311 1063 पर एंड स्टे ट्यून्ड टू रेडियो ऑल ऑफ 3 ओपन दस

0: दोहा बैंक और लुलु लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।
2: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: This hour is brought to you by
4: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.
5: In association with
6: Doha Bank,
5: make shopping more rewarding. Get a 500 Qatri Riyal Lulu voucher with your new Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card. Just spend 1 Qatri Riyal to unlock up to 5% rewards. Apply before June 30th. TNC apply.

0: तनिषा
1: तनिषा के साथ है आप रेडियो 106.3 FM पर और रिचार्ज चल रहा है यहाँ पर दिलजीत दोसांझ की आवाज में. लवर सुना आपने और लेम जैम्स का सवाल पूछा था मैंने. फर्ज करो खुशी नाम की एक लड़की है और उससे पूछना है कि चार्जिंग केबल कहाँ रखी है तूने, मैं इसे कहाँ ढूंढूं, ये आपने गाना गाते हुए पूछना है, तो कैसे पूछोगे? और बहुत कम जवाब आए हैं मुझे, पर द करेक्ट आंसर इज खुशी केबल कहाँ ढूंढूं. आई नो इट इज़ वेरी लेम, मुझे इतना गंदा रिस्पॉन्स आया ना, लाइक वेन आई आस्क्ड हियर मेरे ऑफिस में सब लोगों से, दे लाइक तनिषा प्लीज़ यहाँ से चली जा और अभी एक दिन तक तो हमें नज़र ही मत आना. तो या सो बट मुझे पता था कि आप प्यारे हो यार, आप एंटरटेन कर देते हो मेरी इन लेम बातों को और फुल उसमें साथ देते हो. थैंक यू सो मच यार मेरी जान. इसी बात पे एक बढ़िया गाना भेज रही हूँ आपके लिए अरिजीत सिंह की ही आवाज़ में और चलती हूँ, मिलूंगी कल दोपहर 2 बजे. अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरी जान. और सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, जियो बिंदास.
0: रेडियो ऑलिव पर Song of the Year. Yeah, guys.

0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम, शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC apply।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदु।

हाय पांच बज के सात मिनट 17 सेकंड स्टूडियो की घड़ी पे आवाज में शो की शुरुआत हो चुकी है। मैं गरीब सड़ियों की तरह की हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर तोडे नाल छड़ दो सब कुछ छड़ दो हुण मेरे ते ऑफिस वाली गलियां। अरे छोड़ा यार अब भूल जाओ दिन खत्म हो गया है अब 4 घंटे मुझको समर्पित कर दो। चुकी आप मेरे साथ रहो बेबी जबरदस्त इवनिंग शुरू हो चुका है। बताओ क्या सर आपका आज का दिन किसी ने आपका मूड तो नहीं खराब किया? कोई बात नहीं अपन मिलके संभाल लेंगे यार, मेरे को शिकायत लगा देना तुम ठीक है। 3311106 3 पर आपके दिल में जो भी है मुझे व्हाट्सएप कर दो, अपने दिन के बारे में बता दो, गुड इवनिंग वाले मैसेजेस भी भेज दो और सब ठीक है स्माइल तो कर दो यार। ऐसा गुब्बी जैसा मुंह मत बनाया करो मेरे सामने, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं जब गुब्बी जैसा मुंह बनाती हूँ ना मेरे ऑफिस वालों को दिख जाता है, वो पूछ लेते हैं कि क्या हो गया तेरी जिंदगी में। क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी आपका चेहरा जो है वो सबको एक तरीके से देखने की आदत पड़ी होती है, वो है बिल्कुल हैप्पीनेस खुशी, जैसे कि आप लोगों को मुझे सुनने की आदत पड़ी हुई एकदम बढ़िया। अगर जरा सा भी थोड़ा सा भी मतलब मेरा नाक भी बंद रहेगा तो आपको पता लग जाता है कि आज क्या है, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या। सो यार आप लोगों से बहुत सारा प्यारा, लव यू 100 किलो वाला है ठीक है। सुनते रहो रेडियो ऑलिव, कॉल कहते रहो जियो बिंदास।

0: ऐसे विसल बजानी है मैंने, और जब बजाने की कोशिश करती हूँ फूके निकल आती है मुंह से। हाँ जी मैं जी सुनियो के तथा की हाल चल सस्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। कह दो ना और आउट कि वेदर जो है वो काफी ज्यादा गर्म हो गया। गर्मी दिन में बाहर निकलना चाहे दिन हो चाहे रात हो गर्मी लगती है, लेकिन कतर में ना इस चीज का स्पेशल इंतजाम है। और कल क्या हुआ कि कल बाहर जाके हम लोग डिनर के लिए गए थे एंड हमने सोचा कि चलो यार जिवान आइलैंड जो है वो चलते। जैसे ही हमारी गड्डी लैंड की है जिवान आइलैंड में, भाई लगा ही नहीं कि 45 डिग्री टेम्परेचर अपने कतर का है और यहाँ पर समर चल रहा है, ठंड लग रही थी। हम ना एक रेस्टोरेंट में गए और आउटसाइड, क्योंकि पूरा जिवान आइलैंड जो है एयर कंडीशन है, आपको पता है कि जहां पे भी आप जाओगे वहां पे भी आपको गर्मी का फील तो 1% भी नहीं आने वाला। हमने 3-4 बार अपनी जगह जो थी वो बदली, क्योंकि हर जगह पे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी और जिस तरह का लाइट्स पानी माहौल जो बना हुआ था वो बहुत ज्यादा बढ़िया था। एंड थैंक्स यार कतर में, ये क्या बात है यार, बहुत ही कमाल की बात है कि गर्मी होते भी गर्मी जो है वो हमको नहीं लगती। कि क्या है, जब गर्मी है तो आपकी मटर गश्ती पे स्टॉप नहीं लगना चाहिए। मटर गश्ती पे स्टॉप तब लगता है जब गर्मी फील होती है, एकदम बुरा लगता है, लेकिन मतलब ही नहीं है यार। जहां पे भी जाना जाओ, इतनी फैंसी फैंसी आउटसाइड जगह है जहां पर आप जो है वो बिंदास जा सकते हो, आपको गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं कतर की जो कि एयर कंडीशन है एकदम फैंसी वाली, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आप लोगों को भी एक आइडिया हो जाए, अगर नहीं है तो चलो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है,

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. Experience more with ओरिडू.
3: इस खेल में प्लेयर प्लेयर नहीं वॉरियर कहलाते हैं. यहाँ हर गोल पे एड्रेनलिन रश हाई होता है.
4: Over the top of Donna Rumba!
3: यहाँ हर चोट एक मेडल है. हारना मना है और डरना गुनाह है. यहाँ सेलिब्रेशन के लिए ढोल नहीं, दिलों की धड़कन शोर करती है. और ऑडियंस चीयर नहीं, रोर करती है. बिकॉज इट्स नॉट जस्ट अ गेम, इट्स एन इमोशन.
5: It's not just a game, it's an emotion, it's an emotion, it's an emotion.
3: FIFA ki har detail ke liye sunye Radio Olive.
6: In association with...
7: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
8: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange.
7: Your trusted remittance partner.
9: Iske swag pe munde jaate hain dil haar ke. Ladki ko pasand hai kadak chai, malai maar ke. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे,
10: आरजे सिमरन के साथ.
11: Zabardast evening, make you drive golden with.
12: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
13: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop. Just

0: ये तो निब्बा निब्बी वाला गाना लगता है अभी ये।
1: कह दो ना यू माय सोनियो, ओ माय गॉड, कह दियो यू माय सोनियो।
0: सोनिया के तो देखिए सत्या सिमरन कौर आपके साथ 5:34 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं।

चाहिए चाह माइया मैंने धुब लग दी बेटा बुगल ना की ना थोड़ा दम घुट जाना क्योंकि क्या होता है जब इतनी सारी गर्मी होती है तो आप अपने ऊपर बॉडी के ऊपर कुछ भी लपेटने का मन जो है वो नहीं करता है। खैर कतर की गर्मी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन बहुत सारी ऐसी गर्मी है मतलब ऐसी जगहें हैं जहां पर गर्मी के टाइम पे आपको गर्मी नहीं लगेगी जैसे कि जवान आइलैंड के बारे में मैं बात कर रही थी वो एयर कंडीशन है फुली एयर कंडीशन है। कटारा 21 हाई स्ट्रीट जो है वो भी एयर कंडीशन स्ट्रीट है जहां पर आपको वेंट्स जो है अंडरग्राउंड लगे हुए हैं तो आप चलिए फिरिए जाइए एंजॉय करिए। वेस्ट वॉक मेरा फेवरेट ये वाला एरिया है वेस्ट वॉक में भी आप घूमिए फिरिए खाइए पिए गर्मी महसूस ही नहीं होगी। वेंडम मॉल है हजम मॉल है मतलब लुसेल बॉलीवुड है ये सारी ऐसी ऐसी जगहें हैं जहां पर आपको 45 की गर्मी 18 पे आ जाएगी 15 पे आ जाएगी ठंडा लगने लग जाएगी।

0: the 26 million riyals dream.
1: Ab sirf savings nahi, sapne grow honge. Jeetiye pure 5 million riyals cash prizes.
0: Jeetne ke char raste. Pehla, apna account balance badhaiye. Har 10,000 riyals growth par paiye ek coupon.
1: Dusra, agar salary 4,000 plus hai ya 50% save kiya hai, to aap eligible hai.
0: Teesra, naye customers ko pehli salary ya 10,000 funding par guaranteed coupon. Aur chautha, 9 mahine regular salary par paiye ek extra coupon aur mega draw ticket.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ Zabardast evening. Make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

0: मैं हूँ दिव्या दत्ता एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव जियो बिंदास.
1: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क.

0: How romantic, huh? मैं जी सुनियो कि दादी की हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ और आपके लिए डेडिकेट कर सकती हूँ गाना जो कि फुटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। फीफा वर्ल्ड कप का फीवर जो है वो ऑन है, हर कोई इसी के बारे में बात कर रहा है और मैचेस जो हैं वो अभी जो बाकी बचे हुए हैं शाम को 7 बजे जो है वो स्पेन और काबो वर्दे के बीच में होने वाला है। आई होप मैं सही बोल रही हूँ, सही से प्रोनाउंस कर रही हूँ। सो दूसरा मैच जो है 10 बजे होने वाला है वो बेल्जियम एंड इजिप्ट के बीच में होने वाला है। आप कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हो, आपकी फेवरेट वाली टीम जो है वो कौन सी है, आप मुझे बता सकते हो 3311063 पर। एंड उसके साथ साथ आप लोगों के मैसेजेस जो मेरे पास आ रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक मुझे गुड इवनिंग का मैसेज नहीं भेजा है, क्यों, प्यार खत्म हो गया क्या? मतलब मैं शाम को जाती हूँ और फिर उसके बाद अगले दिन शाम को वापस आती हूँ, उसके बीच में ऐसा क्या हुआ था कि आपका प्यार जो है वो मेरे लिए खत्म हो गया? नहीं हुआ है तो फिर प्रूव करो ना यार, भेजो मुझे मैसेजेस, सुनते रहो रेडियो ऑलिव को और कहते रहो जियो बिंदास। चक्को फिर आ रही हूँ थोड़ी देर से।
1: ये खेल है Blockbuster.
2: In association with
1: Download the City Exchange mobile app now to send money quickly at the best exchange rates.
3: Also, Palm Swiss Gold Bars are now available at the best price at City Exchange,
1: your trusted remittance partner.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: क्या आप एक प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन या प्लम्बर हैं? तो अब अपनी स्किल्स को प्रूव करने का वक्त आ गया है। हासिल कीजिए एक ऑफिशियल कहरामा सर्टिफिकेशन, पाइए अपना लाइसेंस जो आपके लिए कतर में नए जॉब अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा, एक ऐसे सर्टिफिकेट के साथ जो आपकी ब्रिलियंस और क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का कमिटमेंट शो करता है। इस मौके को हाथ से जाने मत दीजिए, अभी रजिस्टर कीजिए और बन जाइए अपने फील्ड के टॉप कॉन्ट्रैक्टर्स और टेक्नीशियंस में से एक। बस विजिट कीजिए कहरामा की वेबसाइट www.km.qa और खुद को रजिस्टर कीजिए। सर्टिफाइड बनिए, सर्टिफाइड के साथ बनिए।
2: कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
3: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
4: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए, हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
3: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
4: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
0: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

0: lasă-mi iar. Anji mega ji sunyo kitta de ki haljal sat sri akal simran kaur hai aapke sath puch nahi ho hal fakiran da fakiran da hal nahi puchde hai ki mausam da hal puch lo mausam aapke suno चलो जी सुन लो मैं आपको सुना देती हूँ 37 डिग्री सेल्सियस अभी तक का टेम्परेचर है फील्स लाइक 37 डिग्री सेल्सियस ह्यूमिडिटी 21% है बढ़ती जा रही है विंड जो है 13 किलोमीटर पर आर की रफ्तार से चल रही है आज का हाईएस्ट टेम्परेचर है 45 डिग्री सेल्सियस
1: रुक जा बेबी सांस तो ले ले
0: कैसी सांस ले लूं यार भूलना यार सुनते रहो रेडियो ऑलिव कर कहते रहो जियो बिंदास

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।
0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
1: Fresh fish on the grill. Slow cooked mandi. Perfectly spiced prawns. And that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish. Crabs, prawns. Crafted with patience. Serve with pride. Danatal Pahar. The ultimate Katri adventure. Souk Waqif Alkhol.
3: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ।
4: ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ,
3: ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਕਤਰ ਹਿੰਦੀ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੇਡੀਓ ਆਲਵ 106.3 FM ਜੀਓ ਬਿੰਦਾਸ।
5: ਆਲਿਵ ਸੁਨੋ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ, ਕਤਰਸ ਨੰਬਰ 1 ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੇਡੀਓ ਨੈਟਵਰਕ।
6: Zabardast evening, make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: Show boy gabaru.
1: आप लोग इतने क्यूट हो यार. खुश हो जाता है आप सबके मैसेजेस देख के. मैं कह रही हूं सुनियो कितना देखिए हाल चाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ. अभी मुझे अदील जी का मैसेज आया, कहते सिमरन अपनी आवाज की नजर उतारा करो आप. हाय रब्बा यार, इतना प्यार कौन देता है यार. आप लोग जो है ना, जितनी भी मेरे अंदर एनर्जी रहती है, जितनी भी मैं खुश रहती हूँ, ये आप लोगों की वजह से है. आप लोग हमेशा यही पूछते हो कि यार तुम एक जैसा मूड कैसे रख लेती हो, तुम एक जैसी हैप्पी कैसे रह लेती हो. ये जो इस तरह के मैसेजेस आप लोग मुझे भेजते हो ना, सच्ची में यार दिल खुश हो जाता है यार. मतलब कमाल है यार. थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए. और अगर आपके दिल में कोई बात है और आपको लगता है आप इस तरह का कुछ मेरे बारे में सोचते हो, तो लिख दिया करो यार, क्योंकि मुझे पढ़ के अच्छा लगता है. जिस तरह से आप बोलते हो ना कि सिमरन तुम्हारी आवाज़ सुनते हैं तो दिन बन जाता है, उसी तरह से आप लोगों की आवाज़ सुन के और आप लोगों की इस तरह की बातें सुन के मेरा दिल खुश हो जाता है यार.
2: प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है.
1: ओए ओए ओए, दर्दीला गाना सुनते रहो रेडियो ऑलिव कर गए देरो जियो बिंदास.
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर.
4: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है.
5: कूल सॉन्ग.

0: Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
1: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
0: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
1: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
0: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।
2: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
3: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: Your daily surprise is here. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
1: दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
2: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर.
1: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में.
2: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम. शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. टीएनसी अप्लाई.
3: Zabardast evening make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop.

0: नमस्कार, मैं हूँ गुलराज सिंह।
1: गुलराज सिंह
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3
1: जियो बिंदास।
2: ऑलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

हाँ जी हैंगओवर तेरी यादों का स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, जलेबी खाने का मन कर रहा है।

0: ज्यादा मीठा नहीं खाना, इसीलिए अफगान जलेबी वाला सिर्फ गाने सुनो, फील आपको जो है वो मिल जाएगी। लेकिन ये कौन सी फील है आपको बताती हूँ। एक वर्ड है ब्रेन रॉट, आपने बहुत ज्यादा यूज किया, सुना होगा जेंजी या फिर जेन अल्फा जो है वो इसको यूज करते हैं। इसका ये हो जाता है कि जब आप बहुत ज्यादा कंटेंट जो है वो सोशल मीडिया पे यू नो वो करते हो, कंज्यूम करते हो, और उस टाइम पे आपका मेंटल फटीग, डिटैचमेंट और ये सारी चीजें, मतलब रियल वर्ल्ड से आपका दिमाग जो है वो नहीं रहता है, और लो वैल्यू कॉन्टेंट जो है सोशल मीडिया पे देखते रहते हो, मतलब कुछ भी आ रहा है, मीम हैवी लैंग्वेज, मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब जिसका मतलब ही नहीं बनता है यार। मतलब ठीक है, आजकल वो आलू गोभी वाले कंटेंट भी चल रहा है, गोभी की शादी आलू से होनी होती है, लेकिन गोभी का मन बदल जाता है, आलू का दिल टूट जाता है, मतलब कुछ भी कंटेंट हम देख रहे हैं तो वो ब्रेन रॉट जो है उसके लिए यूज किया जाता है। 6:50 स्टूडियो की घड़ी पे हो चुके हैं, सिमरन कौर आपके साथ है, गुड इवनिंग है जी, सब ठीक है, बढ़िया है, स्माइल कर लो यार।
1: Song of the Hour. Yeah, guys.

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु मास्टरकार्ड प्लैटिनम शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। टीएनसी अप्लाई।
2: गाय के साथ सीएनजी हो या फ्यूल टाइप बसेस, 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर, पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट। कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर। विजिट कारमेल ग्रुप नाउ।
3: सोचो अगर सेविंग से आप बन जाओ मिलियनेयर, कमर्शियल बैंक के सेव एंड विन कैंपेन में भाग लीजिए।
4: हर 10,000 कतरी रियाल सेविंग ग्रोथ पे मिलेगा एक कूपन, या सिर्फ 50% सैलरी सेव करो एंड एंटर द ड्रॉ।
3: न्यू कस्टमर हो तो अकाउंट खोलो और फर्स्ट सैलरी ट्रांसफर पे गारंटीड चांस टू विन,
4: और 9 महीने की कंसिस्टेंट सैलरी ट्रांसफर के साथ मेगा ड्रॉ में एंट्री पक्की।
3: तो फिर सोचना क्या, अगले मिलियनेयर आप हो सकते हो। आज ही शुरू करो सेविंग्स, कमर्शियल बैंक, सेव एंड विन।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas. Football boundaries नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता. इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया. अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया. नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है. और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है. Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world.
1: Doha Bank और Lulu लाए हैं shopping का एक rewarding experience.
2: अब apply कीजिए Doha Bank Lulu Mastercard Platinum Credit Card के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 Lulu shopping voucher.
1: Lulu stores पर हर spend के साथ मिल सकता है up to 5% savings. Lulu points के form में.
2: Plus enjoy कीजिए airport lounge access, my book offers, dining deals और lifestyle privileges. बस card activate कीजिए Lulu पर minimum कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
1: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक लूलू मास्टरकार्ड प्लैटिनम. शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग. TNC अप्लाई.
3: फ्रेश फिश ऑन द ग्रिल, स्लो कुक्ड मंडी, परफेक्टली स्पाइस्ड प्रॉन्स एंड दैट स्पेशल चटनी. नो नॉइस, नो ड्रामा, जस्ट सी फूड डन राइट. बीबीक्यू फिश, क्रैब्स, प्रॉन्स क्राफ्टेड विद पेशेंस, सर्व विद प्राइड. दानादल पहाड़, द अल्टीमेट कतरी एडवेंचर. सुख वाकिफ अलखोर.
4: मैं हूं अनिल कपूर.

0: Olive 106.3 FM Gio Bendaz. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding.

0: सी एन फ्लाई गाय के साथ CNG हो या फ्यूल टाइप बसेस 64 सीटर या कॉम्पैक्ट 26 सीटर पाइए बेहतर माइलेज और मैक्सिमम कंफर्ट कारमेल ग्रुप के साथ अब सफर विदाउट सफर विजिट कारमेल ग्रुप नाउ कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स CB 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं सपने ग्रो होंगे जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस
0: जीतने के चार रास्ते पहला अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन
1: दूसरा अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है
0: तीसरा नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन और चौथा 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट
2: Zabardast evening. Make you drive golden with.
3: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop. Just

0: मोहब्बत, मोहब्बत में कभी कभी आप बहुत आगे निकल जाते हो कि यार सामने वाला आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: देखो, अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमको सिखाया जाता है कि हमेशा अच्छे बन के रहो, लेकिन क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा अच्छे बनते हो ना, तो लोग आपका फायदा उठा लेते हैं और ये आपको डिसरिस्पेक्ट हमेशा करवा देता है, क्योंकि सामने वाला तो ये सोच लेता, अरे इसको तो किसी चीज का बुरा नहीं लगता, अरे बुरा लग भी गया तो बोल देंगे कि अरे यार इट्स ओके, ऐसे थोड़ी होता, तो हमारा मतलब थोड़ी है। तो ऐसे इंसानों को ना बड़ा आसान रहता है मनाना, समझाना, और लेकिन सामने वाला उनकी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, पर वो बड़े अच्छे हैं, वो आगे से कुछ बोलते नहीं है। लेकिन आपको पता है, ये जो आप अपने साथ कर रहे हो ना, ये आप को जो आपका अच्छा होना जो है ना, वो लॉन्ग टर्म हेल्थ में काफी बड़ा इशू क्रिएट कर सकता है। सो अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है मजाक के नाम पे, फेंक के मारो आलू गोभी उसके मुंह पे और बोलो हट। ठीक है, अपनी रिस्पेक्ट करवानी है आपको, मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। कमर्शियल बैंक प्रेजेंट्स सीबी 2026 मिलियन रियाल्स ड्रीम।
1: अब सिर्फ सेविंग्स नहीं, सपने ग्रो होंगे। जीतिए पूरे 5 मिलियन रियाल्स कैश प्राइजेस।
0: जीतने के चार रास्ते। पहला, अपना अकाउंट बैलेंस बढ़ाइए। हर 10,000 रियाल्स ग्रोथ पर पाइए एक कूपन।
1: दूसरा, अगर सैलरी 4,000 प्लस है या 50% सेव किया है तो आप एलिजिबल है।
0: तीसरा, नए कस्टमर्स को पहली सैलरी या 10,000 फंडिंग पर गारंटीड कूपन। और चौथा, 9 महीने रेगुलर सैलरी पर पाइए एक एक्स्ट्रा कूपन और मेगा ड्रॉ टिकट।
2: Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.
3: Zabardast evening. Make you drive golden with.
4: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
5: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

सबकी मोहब्बत है। अर्ज किया है तेरा हंसना भी क्या मुसीबत है, तेरा हंसना भी क्या मुसीबत है, मैं कोई बात करने आया था। ये किसी ने मुझे लिख के भेजा यार, थैंक यू सो मच, और मुझे डेडिकेट किया और कहते हैं कि नाम मत लेना। ठीक है यार दोस्त, आपका नाम नहीं लेंगे लेकिन आपने ये जो लिखा है हमारे लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलो अब पॉइंट पे आते हैं। So, नेम गेम में मैं आप लोगों के सबके नाम लेने वाली हूं। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम मैं अभी के अभी रेडियो पे बोल दूं तो आपको अभी के अभी मुझे अपना नाम बताना होगा लिखकर। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 3311063। जी हाँ 3311063। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ मुझे आप अपना नाम लिख के भेजिए और कुछ नहीं दिख रहा, नो हाय नो हेलो, सिर्फ और सिर्फ आपका नाम। चलिए अब मैं नाम बोलने स्टार्ट कर रही हूँ। अदील, आसमा, वेरोनिका, सुमी, एश, डेजी, इरफान, आयुष, सलीम, ओके, शाबाज, रॉनी, आमिर, धन सिंह, कटरीना, चेरी, भगवान, अरशद। प्लीज़ मुझे इमेजिनरी नेम मत लिख के भेजो, जो आपका नाम है दोस्तों वही लिख के भेजो। दुर्बा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मिसाम जी थैंक यू सो मच। मोहम्मद जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। मिराज जी थैंक यू सो मच। नारायण जी थैंक यू सो मच। शामसुल हुसैन जी थैंक यू सो मच। इब्राहिम थैंक यू सो मच। फुरकान अली जी थैंक यू सो मच। अगला गाना शुरू होने वाला है दोस्तों। साजिब जी थैंक यू सो मच। बशीर जी थैंक यू सो मच। इब्राहिम ऑलरेडी मैं आपका नाम ले चुकी हूँ। नारायण जी थैंक यू सो मच। तंजी जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। सिर्फ और सिर्फ दोस्त क्विकली क्विकली नाम लिखे। समीर जी थैंक यू सो मच। कबीर खान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रिमल जी थैंक यू सो मच। सूरज जी थैंक यू सो मच। फैसल जी थैंक यू सो मच। सुमन, उदयन जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। रहमान जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। एंड दैट्स इट फॉर नाउ। जिन जिन लोगों के नाम ले लिए आपने सुन लिए, थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला इमोजी बना के भेज दो। अगले घंटे खेलते हैं यार एक चुटकी सॉन्ग।

0: दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

0: सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास। दोहा बैंक और लुलु लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलु मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलु शॉपिंग वाउचर।
0: लुलु स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलु पॉइंट्स के फॉर्म में।
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माय बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलु पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026। दोहा बैंक लुलु Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.
2: Hello to all the listeners of

0: हमारा बॉलीवुड तो है।
1: रेडियो ऑलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: एक चुटकी सॉन्ग मैं अभी प्ले कर रही हूँ, बताओ ये कौन सा सॉन्ग है। बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं बताओ आपको ये कौन सा गाना लग रहा है। आपने मुझे वॉइस नोट भेजना है, हे सिमरन अपना नाम बताइए और गाने का नाम बताइए। गाना चाहे तो गा दीजिए, बताना चाहे तो बता दीजिए, लेकिन वॉइस नोट भेजिएगा। और भेजना कहाँ पे, 3311063 पर। एक बार वापस से सुना रही हूँ। ओके जी, चलो 3311063 इंतजार कर रही हूँ मैं।
3: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
4: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: ओहो मेरे यारा हम खेल रहे थे
1: रेडियो ओलिव पर
2: बहुत बढ़िया
0: एक चुटकी सॉन्ग ये था दोस्त और आप लोगों के जवाब चलो सुनते हैं यार
3: सिमरन सॉन्ग जो प्ले इज हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते फ्रॉम द फिल्म आशिकी 2
0: थैंक यू सो मच जी
4: हेलो सिमरन दिस इज राजीव मोदी एंड विद मी ओजस्विन मोनिका द एक चुटकी सॉन्ग एंड लिरिक्स इज हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते तुम ही हो एंड द फिल्म इज आशिकी 2 आई थिंक सो दिस
0: थैंक यू सो मच जी
5: Hey Simran,
0: Hi.
5: How are you?
0: Good, yaar.
5: It's always pleasure to hear you.
0: Oh, thank you.
5: The song is Hum tere bin ab reh nahi sakte Tere bina kya wujood mera
0: Awesome, Surabhi. Bahut pyari awaaz hai aapki.
6: Hi Simran.
0: Hello.
6: Mera naam Ajeej hai.
0: Okay, Ajeej.
6: Ye gaana hai. क्योंकि तुम ही हो जिंदगी अब तुम ही हो
0: एक नंबर थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू आप सबके मैसेजेस के लिए इसी तरह से यार भेजा करो वॉइस नोट देखो जब आपने लिख दिया होता तो मैं आपको पढ़ के बता देती आपको मजा थोड़ी आता इस तरह से मजा आता है यार

बाकी की बातें आप कल करेंगे अगले दो घंटे में। नाइट लाउंज को एंजॉय करिए और शाम को कल 5 बजे होती है आपसे मुलाकात। ध्यान रखिएगा बस अपना, खाने में दरोश कर दे रो, चेहरे पे बड़े वाली स्माइल रखो, किसी का दिल मत दुखाना। बी नाइस टू एवरीवन यार। गुड नाइट, जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड लव यू 100 किलो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. दोहा बैंक और लुलू लाए हैं शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस.
1: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर.
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में.
1: प्लस एंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफस्टाइल प्रिविलेजेस. बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल 1 स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए.
0: ऑफर वैलिड टिल 30th June 2026. दोहा बैंक Lulu Mastercard Platinum. Shopping now more rewarding. TNC apply.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. सो आज बात शुरू करते हैं बॉलीवुड के उन राज से जो अगर थोड़े से अलग होते तो शायद हिंदी सिनेमा की हिस्ट्री भी अलग होती. सोचिए, आज हम कुछ फिल्म्स को कुछ एक्टर्स के बिना इमेजिन भी नहीं कर पाते, लेकिन बॉलीवुड में बहुत से आइकॉनिक मूवीज ऐसी हैं जो जहाँ पहले चॉइसेस कुछ और थी. और ये सुनकर हैरानी होती है कि एक यस या नो पूरी हिस्ट्री बदल सकता है. फॉर एग्जाम्पल, कोई ब्लॉकबस्टर रोल्स एक्टर्स ने कई बार रिजेक्ट किए हैं और फिर वही रोल्स या गाने किसी और का करियर का टर्निंग पॉइंट बन गया है. लाइफ भी कुछ ऐसी ही होती है. कभी कभी हम सोचते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी मिस हो गई वो लॉस थी, लेकिन क्या पता वो किसी और के रास्ते की शुरुआत बन गई. एक फन फैक्ट बताती हूँ, फिल्म इंडस्ट्री में एक टर्म यूज होता है, स्लाइडिंग डोर्स मोमेंट, यानी एक डिसीजन जो पूरी कहानी को दूसरे डायरेक्शन में लेकर चला जाता है. सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हम सभी लाइफ में भी ऐसे ही मोमेंट्स यू नो फील करते हैं. एक कॉलेज, एक जॉब, एक सिटी, एक फोन कॉल, एक इंसान, और पूरी कहानी बदल जाती है. तो आज का सवाल है आपसे कि आपकी लाइफ का सबसे बड़ा वो मोमेंट कौन सा है, ऐसा क्या है अगर आपने किसी और को चुना होता या किसी और रास्ते को चुना होता तो बहुत अलग होता. तो आज आपकी कहानी बिल्कुल बिल्कुल अलग सुनने में आती. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज.
1: यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 FM.

आप लोगों के मैसेजेस पढ़ के ना मुझे सुकून मिलता है. मुझे ऐसा लगता है कि यार हाँ, मतलब कितने सारे लोग हैं जिनकी कहानी ऑलमोस्ट सेम है. सो यहाँ पर वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई आज हमें बॉलीवुड से शुरुआत की थी और अब लेट्स टॉक अबाउट अदर थिंग्स. सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि बॉलीवुड के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरी लाइफ के लिए है वो है किताबें. और आज ऐसी ही किताब के बारे में बात करेंगे. पर उससे पहले कल आई वॉज इन वन गैदरिंग जो कि एक डिनर था जिसमें एक जेंजी भी थी. सच अ ब्यूटिफुल सोल यार. मतलब मुझे ऐसा लगा कि काश मैं भी 5-10 साल पहले इतनी ही एनर्जेटिक होती. सो आज थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया करते हैं, लेकिन वो इमोशनल वाला नहीं, थोड़ा फन वाला. मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ और अगर आप स्माइल कर दो तो समझ जाना कि आप ओल्ड स्कूल जनरेशन से ही हो, लाइक मी. सो कैसेट रिवाइंड करने के लिए पेंसिल यूज करना और टीवी पर फेवरेट शो मिस हो गया तो नेक्स्ट वीक का वेट करना, ये होता था हमारा वो 90s का टाइम. लैंडलाइन पर क्रश का कॉल और पहले उनके पापा का फ़ोन उठाना. मिस्ड कॉल एज कम्युनिकेशन. एक घंटी मतलब पहुंच गए, दो घंटी मतलब नीचे आ जाओ, तीन घंटी का मतलब है इमरजेंसी. और इंटरनेट, एक गाना डाउनलोड करने में ना आधा घंटा लग जाता था और फिर भी खुशी अलग लेवल की होती थी. आज के बच्चे शायद कभी नहीं समझेंगे कि पेशेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है. एक फैक्ट बताती हूँ, 1990s और अर्ली 2000s में एवरेज अटेंशन स्पैन आज से काफ़ी लंबा था. आज हम 10 सेकंड में स्किप कर देते हैं. तब हम एक गाना 50 बार सुनते थे और घंटों उसके लिए वेट करते थे और फिर भी

फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। Culture travels, football connects, and Hiwari is bringing Qatar to the world. Grow your brand across Qatar's key audiences. Connect with Hindi listeners on Radio Olive 106.3 FM, Malayalam audiences on Radio Suno 91.7 FM, and Arabic listeners on Tetkar 107.4 FM. On-air visibility supported by performance-driven digital marketing campaigns. Simple, effective, integrated. Call 3009-1063 or 3082-1063.

आ गई हूँ किताब वापस से एक लेकर। आज बुक इन द फोकस में एक बहुत ही खूबसूरत जापनीज नॉवल की बात कर रहे हैं, डेज एट द मोरासाकी बुक शॉप। आज मुझे लगता है कि किताबें स्पेशली उन लोगों के लिए हैं जो कभी लाइफ में लॉस्ट फील कर चुके हैं, ये वाली किताब स्पेशली। स्टोरी बहुत सिंपल है, एक लड़की है, उसकी लाइफ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चलती, जैसे मेरी भी नहीं चलती, आपकी भी नहीं चलती, बिल्कुल वैसे ही है ये किताब। और फिर सर्कमस्टांसेस उसे एक पुरानी सेकेंड हैंड बुक शॉप तक लेकर चले जाते हैं। अब सुनने में ये बोरिंग लग सकता है, लेकिन यहाँ पर ही एक्चुअली टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है, क्योंकि ये किताब बताती है कि हर प्रॉब्लम एक सॉल्यूशन एक्शन नहीं होता, कभी कभी पॉज भी सॉल्यूशन हो सकता है। आज हम एक यू नो हर वक्त प्रोडक्टिव रहना चाहते हैं, बिजी रहना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, लेकिन किताब एक अलग सवाल पूछती है। क्या आपने कभी खुद को रुकने दिया है, ऑब्जर्व करने दिया है, या फिर ब्रीथ करने दिया है? जापनीज कल्चर में एक कॉन्सेप्ट है MA, विच इज मा, यानी एम्प्टी स्पेस। और वो कहते हैं कि लाइफ में भी खाली जगह जरूरी है, हर मिनट भर देना जरूरी नहीं होता। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि आपकी लाइफ में वो जगह कौन सी है जहां जाकर आपको लगता है कि दुनिया थोड़ी सी स्लो हो गई है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूं मुस्कान और ये है मिडनाइट लाउंज। नंबर है 3311106। यू कैन व्हाट्सएप मी और सुन रहे हैं आप स्टे ट्यून्ड जियो बिंदास।

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

म्यूजिक इंडस्ट्री का ना एक बहुत ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फिनोमिनल है, वन हिट वंडर, यानी एक ऐसा गाना जो इतना बड़ा हिट हो गया कि आज भी लोग गाते हैं, लेकिन आर्टिस्ट फिर कभी उस लेवल का हिट नहीं दे पाते। और अजीब बात यह है कि कई बार गाना आर्टिस्ट से ज़्यादा फेमस हो जाता है। हम सबके पास ऐसे सॉन्ग्स हैं जिन्हें सुनते ही स्कूल या कॉलेज याद आ जाता है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। एक कोई बस की जर्नी, एक ट्यूशन, एक समर वेकेशन, कोई एक दोस्त। साइंटिफिक इवन रिसर्च कहती है कि 15 से 25 साल की एज के बीच जो म्यूजिक हम सुनते हैं वही हमारी मेमोरी में सबसे ज्यादा स्टोर होता है। इसीलिए कुछ गाने सिर्फ सॉन्ग्स नहीं रहते, टाइम मशीन की तरह बन जाते हैं और फिर चाहे कितने भी साल गुजर जाए एक लाइन सुनते ही पूरा सीन याद आ जाता है। सो कौन सा गाना है जो सुनते ही आप सीधे अपने स्कूल या कॉलेज डेज में पहुंच जाते हो? कोई भी सॉन्ग। बाय द वे, जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ तो आई वॉज वेरी यंग और मुझे ना डांस करने के लिए बहुत लोग कहा करते थे, तो आई स्टिल रिमेंबर मैं एक गाने पे नाच के सबको दिखाती थी और वो गाना मुझे हमेशा याद रहता है। इट वॉज चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, वो उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं। सो उस गाने पे हम लोग फटाफट से नाचना स्टार्ट कर देते हैं, मैं, मेरी कजिन्स। सो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा गाना है जो आपको लगता है कि एक्चुअली आपको भी आपके उन पुराने दिनों में लेकर जाता है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: बिंदास ये है मिडनाइट लाउंज,
2: ये है मिडनाइट लाउंज।
0: दोहा बैंक और लुलू लाए है शॉपिंग का एक रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस।
3: अब अप्लाई कीजिए दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के लिए और पाइए कतरी रियाल 500 लुलू शॉपिंग वाउचर।
0: लुलू स्टोर्स पर हर स्पेंड के साथ मिल सकता है अप टू 5% सेविंग्स लुलू पॉइंट्स के फॉर्म में।
3: प्लस इंजॉय कीजिए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, माई बुक ऑफर्स, डाइनिंग डील्स और लाइफ स्टाइल प्रिविलेजेस। बस कार्ड एक्टिवेट कीजिए लुलू पर मिनिमम कतरी रियाल एक स्पेंड कीजिए और रिवॉर्ड्स का मजा लीजिए।
0: ऑफर वैलिड टिल 30 June 2026। दोहा बैंक लुलू मास्टर कार्ड प्लैटिनम। शॉपिंग नाउ मोर रिवॉर्डिंग। TNC अप्लाई।

गुड इवनिंग वंस अगेन. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल ऑफ 106.3 एफएम. मैं हूं मुस्कान और शो का नाम यस मिडनाइट लाउंज. सो हर जगह के ना अपने रूल बुक होती है, एक ऑफिशियल एक अनऑफिशियल. ऑफिशियल वाले तो सबको पता होते हैं, लेकिन आज बात करते हैं उन रूल्स की जो कहीं पर लिखे नहीं होते लेकिन सबको फॉलो करने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कतर में अगर आपको कोई पूछे कि बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, तो आप मेंटली 15 मिनट्स ना ऐड कर लो. या फिर मॉल जाते वक्त बाहर 42 डिग्री हो और अंदर बिल्कुल ठंडा ऐसा लग रहा हो कि एकदम कोई बर्फीली जगह पर आप आ गए हो. ये इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि आधा कतर गाड़ी में ना जैकेट लेकर चलता है. भाई एक और रूल है यहाँ पे, गूगल मैप्स एक रूट बताते हैं लेकिन आपका दोस्त कहता है नहीं यार ये शॉर्टकट है, और फिर वहीं शॉर्टकट 20 मिनट्स लंबा निकलता है. हर सिटी के अपने सीक्रेट्स होते हैं, हर कंट्री के अपने सीक्रेट्स होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि हर मतलब बाहर से आया हुआ व्यक्ति जो यहाँ कतर में है उसके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं. इवन रिसर्च कहती है कि किसी सिटी को समझने के बेस्ट वेज होते हैं उसके रूल्स नहीं बल्कि उसकी हैबिट्स. सो मुझे जैसे एक आदत है कि भाई अगर मैं ऑफिस में हूँ या मैं किसी मॉल जा रही हूँ तो भाई एक जैकेट तो मेरे पास होना ही चाहिए, डेनिम जैकेट टाइप का जैकेट, सो दैट मुझे पता है कि बाहर कितनी भी गर्मी हो अंदर आपको ठंड लगेगी ही लगेगी. एसी चल रहा है मतलब ठंडा होगा ही होगा. सो कतर का सबसे इंपॉर्टेंट अनरिटन रूल क्या है, आपको क्या लगता है? न्यू कमर्स को भी कोई नहीं बताता लेकिन बताना चाहिए यार. 3311106 इज माई नंबर. यू आर लिस्निंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

सो आज ना एक शॉपिंग कन्फेशन करते हैं। हम सब ने जिंदगी में बहुत सारी यूजलेस चीजें खरीदी हैं, लेकिन कभी कभी एक प्रोडक्ट ऐसा मिल जाता है जो जेन्युइनली लाइफ बेटर बना देता है। बाय द वे, मैं अगर अपनी शॉपिंग की हिस्ट्री की बात करूं तो मैंने तो इतने चीज़ें खरीदी हैं जो मुझे बाद में हमेशा गिल्ट ही देती हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जो जेन्युइन चीज़ है वो एक्सपेंसिव हो सकता है कि वो ज़्यादा यूज़ आती है आपकी और बहुत सस्ती है, जैसे कि कोई वाटर बॉटल, हो सकता है कि आपने किंडल कभी खरीदा हो किताबें पढ़ने के लिए, हो सकता है कि कोई पावर बैंक जो आपकी बैटरी के साथ साथ आपको भी बहुत जगह सेव कर देता है, हो सकता है कि कोई एयर फ्रायर जो आपकी हेल्थ को बेटर कर रहा है, या फिर कोई नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स जो आपको बहुत सुकून देता है। सो मेरा एक फ्रेंड है, उसने मुझे कहा कि उसकी बेस्ट परचेज एक सिंपल सी अलार्म क्लॉक थी। क्यों? क्योंकि उसने फोन बेडरूम से बाहर रखना स्टार्ट कर दिया और उसकी स्लीप इंप्रूव हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिहेवियर जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं कि कई बार लाइफ हैबिट से नहीं बल्कि इन्वायरमेंट से चेंज होती है, और कुछ प्रोडक्ट्स हमारे इन्वायरमेंट को चेंज कर देते हैं। तो आज रात का जो सवाल है वो यही है कि ऐसी कौन सी चीज है जो आपने खरीदी और उसके बाद आपको लगा कि यार ये तो पैसा वसूल है। 3311063 इज माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव। स्टे ट्यून्ड। जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।
2: ये है मिडनाइट लाउंज।

सो आज एक बहुत ही अनयूजुअल टॉपिक पे बात करते हैं। हम ना अक्सर फेमस फेसेस की बात करते हैं, लेकिन आज बात करते हैं एक फेमस आवाज की, क्योंकि सच कौन और कहाँ यू नो सुनने को मिल जाए नहीं पता। कई बार आवाज ना चेहरे से ज्यादा पावरफुल होती है, कभी रेडियो, कभी कमेंट्री, कभी अनाउंसमेंट्स, कभी कॉन्सर्ट, बस एक आवाज और हजारों लोग कनेक्ट कर जाते हैं। और यही सोच के ना मैंने हमेशा रेडियो को चुना था। यू आर लिस्निंग रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूँ मुस्कान और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। सो एक फैक्ट बताती हूँ, हमारा ब्रेन ना किसी फैमिलियर वॉइस को सिर्फ मिली सेकेंड्स में पहचान लेता है, फेस से बहुत ज़्यादा फास्ट, और इसीलिए आवाज़ें हम कभी नहीं भूलते। किसी सिंगर की आवाज़ या फिर किसी कॉमेंटेटर की आवाज़, किसी टीचर की आवाज़ या शायद किसी अपने की आवाज़, और कभी कभी एक आवाज़ पूरा मूड यू नो चेंज करके रख देती है। तो आज आपसे सवाल पूछती हूँ कि सबसे मेमोरेबल या फेमस वॉइस आपने कौन सी सुनी है, जो आपको लगता है कि जिसे आप यू नो बहुत बार भी सुनोगे तो आप बोर नहीं होगे। मे बी कोई सिंगर, मे बी कोई यू नो समवन ऑफ योर फेवरेट वॉइस, मे बी योर मदर, मे बी योर फादर, कौन है वो जो आपको लगता है कि आवाज़ के बिना तो दिन अधूरा है। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, मैं हूँ मुस्कान, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

नाउ द टाइम इज कि जब मुझे आपसे कहना होगा कि ये आज रात का आखिरी कॉन्वर्सेशन है आपका और मेरा. सो मेरा फेवरेट एक कॉन्वर्सेशन होता है हमेशा कि इमेजिन करो आपकी लाइफ ना एक मूवी है और उसका डीवीडी रिलीज हुआ है. अब डीवीडी में बोनस जो है वो फीचर्स भी होंगे, डिलीटेड सीन्स, बिहाइंड द सीन, ब्लूपर्स और डायरेक्टर्स कॉमेंट्रेटरी. ठीक है, और मुझे लगता है कि हम सबकी लाइफ में ना ब्लूपर्स बहुत होते हैं. गलत मैसेज गलत पर्सन को भेज देना, ऑनलाइन मीटिंग में म्यूट ऑफ कर देना, ठीक है, मतलब म्यूट रह जाना बेसिकली, रॉन्ग ट्रेन, रॉन्ग लिफ्ट, रॉन्ग नेम, ना जाने कौन कौन से ब्लूपर्स हैं. और फिर वो मोमेंट्स जो है वो उस वक्त एम्बैरेसिंग लगते हैं लेकिन बाद में ना फनीएस्ट स्टोरीज बन जाते हैं. हॉलीवुड में एक टर्म है ब्लूपर रील, और कई बार लोग मूवी से ज़्यादा ब्लूपर रील इन्जॉय करते हैं. शायद लाइफ भी ऐसी ही है, हम परफेक्शन याद नहीं रखते, हम फनी मिस्टेक्स याद रखते हैं. तो आज रात का आखिरी सवाल और आपसे आखिरी बात भी यही है कि आपकी लाइफ का डीवीडी बोनस फीचर रिलीज हो तो सबसे फनी डिलीटेड सीन कौन सा होगा. इस थॉट के साथ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. 3311063 इज माई व्हाट्सएप नंबर एंड देयर ऑफ कोर्स. एंड फॉर नाउ गुड नाइट. आप अपनी ब्लूपर रील को कभी सीरियसली मत लीजिए, वही तो बेस्ट स्टोरीज बनती हैं, तो हमेशा इंजॉय कीजिए. सुनते रहिए रेडियो ऑलिव. फॉर नाउ बाय, टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

0: भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: सिर्फ नंबर वन लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM

फुटबॉल बाउंड्रीज नहीं जानता और कतर का कल्चर कोई लिमिट्स नहीं जानता। इस वर्ल्ड कप जब कतरी फैंस अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने सिर्फ मैच में पॉइंट्स नहीं जीता बल्कि सबका दिल जीत लिया। अपने ट्रेडिशनल कतरी थोप में फुल प्राइड के साथ उन्होंने अमेरिकन स्टेडियम में कतर के कल्चरल वैल्यूज को शोकेस किया। नो मैटर वेयर द गेम इज, आइडेंटिटी हमेशा साथ रहती है और यही है द हिवारी इनिशिएटिव जिसकी पूरी दुनिया दीवानी है। कल्चर ट्रैवल्स, फुटबॉल कनेक्ट्स एंड हिवारी इज ब्रिंगिंग कतर टू द वर्ल्ड।

धुरंधर आपके मॉर्निंग को बनाएंगे बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग सुनिए आरजे कशिश और सुदेव को हर सुबह 6 से 10 बिंदास मॉर्निंग में ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज हर दोपहर 2 से 6 रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास
1: इन एसोसिएशन विद
2: होम्स आर अस वी कंप्लीट योर होम.
3: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर 1 रेडियो स्टेशन रेडियो ऑलिव 106.3 FM जियो बिंदास.

Olive 106.3 FM Gio Bendaz. 106.3.

आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM। अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है।